0: KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
7: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. 3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
8: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco, offer valid till 19 July only.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
13: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

हैं फ्रेंड्स, वी आर बैक. दैट इज राइट. वो वाला जो गाना आपने सुना था, दैट फीचर्ड कार्तिक आर्यन एंड सारा अली खान फ्रॉम द रीमेक ऑफ, नॉट द रीमेक, द स्पिन ऑफ ऑफ द ओरिजिनल लव आजकल. दैट वॉज अ डिफरेंट लव आजकल. लेकिन मैं ना वो वीडियो देख रही थी, अभी ये गाना बज रहा था, बैकग्राउंड में वीडियो भी चल रहा था, एंड आई वॉज थिंकिंग, यार ये कार्तिक आर्यन खाता क्या है? आई मीन ही स्टार्टेड हिज करियर अराउंड 20 years अगो विद प्यार का पंचनामा. दैट हैपन्ड लाइक सो लॉन्ग अगो. आई फील लाइक आई वॉज, आई मीन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट वॉज लाइक 2010, 2011 व्हेन दैट केम आउट. और आज देखो इट इज़ 2026, तो मतलब बहुत ऑलमोस्ट 20 years हो चुके हैं. आई मीन इट्स क्वाइट अ बिग नंबर. तो उसमें भी ये कार्तिक आर्यन, ही हैजंट चेंज्ड एट ऑल. उसकी शक्ल तभी भी वैसी थी, अभी भी वैसी है. तभी भी वो 25 साल का लगता था, आज भी वो 25 साल का लग रहा है. भाई आपका डाइट क्या है कार्तिक आर्यन जी, हमें भी बता दीजिए. हमारी तो उम्र निकलती जा रही है, वैसे टेक्निकली मेरी भी हो रही है, लेकिन एवरी वन स्टिल थिंक्स आई एम 25. सो आई विल, आई डोंट करेक्ट पीपल एनी मोर. आई एम लाइक या आई एम टोटली 25, और हर साल मैं अपना 21st बर्थडे मनाती हूँ. भाई मेरी बात छोड़िए, मेरी बात छोड़िए, हम लोग खेलते हैं गेम. लेकिन पहले ये तो मैं बता दूँ कि आप क्या जीत सकते हैं आज के गेम में. यू कैन विन $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50, एंड दिस इज ओनली फॉर आर डाइन इन कस्टमर्स. दिस इज फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. ओके, चंडीगढ़ बाइट्स, दे हैव द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज विच आर रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. दे आर लोकेटेड ऑफ ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन. विजिट चंडीगढ़ फॉर डिटेल्स. ओके, अगर आप ये गेम खेल रहे हैं मेरे साथ तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप पिछले 1 महीने में ये वाला गिव अवे या कोई भी गिव अवे नहीं जीते हैं. अदरवाइज इट इज़ नॉट फेयर फॉर अदर पीपल, यू नो, एवरीबडी शुड गेट अ चांस टू विन अ लिटिल गिव अवे. तो विदाउट फर्दर अडू, गेम इज सुपर सिंपल. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गेस द बॉलीवुड सॉन्ग विच इज़ अ कॉपी ऑफ दिस ओरिजिनल सॉन्ग. ओके, एंड हियर वी गो. इट इज़ वेरी सिंपल. आई विल गिव यू अ लिटिल हिंट ऑल्सो. इट्स फ्रॉम दिस 1990s मूवी, एंड इट फीचर्स पूजा भट्ट एंड आमिर खान. आई थिंक सो, या पूजा भट्ट एंड आमिर खान, आई एम नॉट रॉन्ग. My number is 972-235-5555.

0: यार इतना भी मुश्किल नहीं था, मतलब इतना तो मुश्किल नहीं था। अगर आप सुन रहे हैं, विच आई एम होपिंग सैटरडे शाम को कोई ना कोई ड्राइव तो कर रहा होगा, अगर आप सुन रहे हैं, मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ। बहुत इजी सा हिंट है, इट इज़ फ्रॉम दिस मूवी जिसमें पूजा भट्ट घर से भाग जाती है और फिर शी मीट्स आमिर खान और फिर वो शी फॉल्स इन लव विद दिस बॉलीवुड एक्टर और फिर इवेंचुअली शी फॉल्स इन लव विद आमिर खान एंड इट्स सुपर सिंपल। कम ऑन, देयर वी गो, दैट्स आवर कॉल। हाय, कैन यू हियर मी? हाय, कैन यू हियर मी?
1: Can you hear me?
0: या नाउ आई कैन हियर यू। आई थिंक मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू था थोड़ा, बट हाय, हाउ आर यू डूइंग?
1: थैंक यू.
0: ओके,
1: वो गाना है या पूजा भट्ट जो गाना गा रही है, परियों की दुनिया में आए हो, समथिंग समथिंग. दैट्स द अंतर ऑफ द सॉन्ग.
0: यस, यू आर
1: चलो
0: सो
1: तुम तो
0: क्लोज। टेल
1: खैर कराए.
0: मी द टाइटल ऑफ द सॉन्ग। ना ना ना ना,
1: रिमेम्बर.
0: यू आर राइट, यू आर ऑन पॉइंट।
1: Yeah, I know the song. Yeah, but that's the
0: Oh,
1: song. That's
0: I'll have to go to the next
1: all right,
0: caller, but
1: though.
0: thank you for calling.
1: I understand.
0: Hi, you're on the line. Thank you for
1: Yeah, I know that
0: calling.
1: song.
2: Hi, I'm Himakshi. How are you doing?
0: Good, Himakshi. So go for the answer, okay? Himakshi, do you think you know the answer?
2: Yes, it's from Dil Hai Ke Manta Nahi. It's ए मेरे सपनों के सौदागर.
0: अरे वाह, क्या बात है! हम चलो थोड़ा सा गा भी देते हैं। 1 2 3 टू टू गो। ओ मेरे सपनों
2: मेरे
0: के
2: सपनों को
0: सौदागर,
2: सौदा गए
0: मुझे ऐसे।
2: मुझे सी जगा ले जा.
0: वेरी गुड, ये आप जीत चुके हैं। तो हिमाक्षी, स्टे ऑन द लाइन। आई एम गोना प्ले अ ट्रैक इन द बैकग्राउंड एंड देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन। ओके
2: श्योर श्योर.
0: ओके गाइस, आप ये गाना एंजॉय करिए। वी विल बी राइट बैक।

0: गाइज आर यू गाइज हैविंग फन? आई एम हैविंग फन बिकॉज इट इज सैटरडे नाइट. अगर आप पार्टी नहीं कर रहे हैं सैटरडे नाइट को तो क्या ही कर रहे हैं. स्टेप आउट ऑफ द हाउस, गो हैव सम फन, मीट योर फ्रेंड्स एंड हैव सम गुड फूड, हैव सम ड्रिंक्स, वट एवर यू वॉन्ट. गो टू अ क्लब, देर आर सो मेनी बॉलीवुड क्लब्स इन टाउन, यू शुड गो एंड जस्ट डांस योर हार्ट आउट. We will be back after a really, really short break. लेकिन तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए. Actually, गाना मैं बाद में लगाऊंगी. हम 30 सेकंड में तो ब्रेक में जाने वाले हैं, तो आई डोंट वॉन्ट टू रूइन द मूड, यू नो. 30 सेकंड के लिए आप मेरी ही बात सुनिए. तो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, दिस इज एपी द हिपी ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. माई रेगुलर ब्लॉक इज फ्रॉम मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 7 to 10. और आज आई एम ऑन अ स्पेशल मिशन टू एंटरटेन यू गाइज, क्योंकि द रेगुलर पर्सन इज आउट ऑन वेकेशन. तो वी आर जस्ट हैविंग फन. तो गाइज स्टिक अराउंड, व्हेन यू कम बैक आई हैव लॉट्स मोर अमेजिंग म्यूजिक टू मेक श्योर योर सैटरडे इवनिंग इज ग्रेट.
1: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
2: Beta, 95% aaye?
3: Haan, mummy.
2: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
4: Mera?
2: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
8: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
5: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
10: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है.
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम.
13: डोंट लेट डेट रूइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
3: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

we are back. This is Ippy the Hippie, and y'all are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Yes, it is an evening in Dallas, but it is not my show, An Evening in Dallas. It is just another evening in Dallas, and it is a very special evening. क्योंकि सैटरडे इवनिंग है, सैटरडे को वीकेंड का पहला दिन है और सिर्फ एक ही दिन बचा है उसके बाद. हाय हाय, आप लोग तो लकी है, आप घर बैठ के रेडियो सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं. मैं तो यहाँ पे बैठ के किसी के लिए फिल इन कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, करना पड़ता है वो सब चीज़ें. तो गाइज, इन केस यू आर वंडरिंग वो कौन सा गाना था जो अभी बजा है, वो सो कूल एंड सो अमेजिंग एंड सो इनक्रेडिबल. गाइज, दैट सॉन्ग इज कॉल्ड किताबें बाय योर्स ट्रूली. That is me. It is Ippy the Hippie, and it was my track in collaboration with this artist called Third State, and I was very, very happy to put it out. Yes, it is available on all digital media platforms and everywhere. So, guys, make sure you do check it out. And it's such a... I was very proud of that track. वो मैंने लिखा था, वो पूरा हिंदी गाना मैंने ही लिखा था, मैंने ही कंपोज किया था पूरा का पूरा. And I hope you enjoyed it. In case you liked it, it's called Kitabein, KITAABEN, and it is being streamed in like 27 countries right now, including Japan and Vietnam and Brazil. और मुझे पता नहीं वहाँ पे हिंदी कौन ही सुनता है. होपफुली कोई ना कोई तो सुनता ही होगा, तभी स्ट्रीम हो रहा है. तो बिना आगे बातें करते हुए चलिए गाने ही सुनते हैं, क्योंकि सैटरडे नाइट को गाने का टाइम होता है, डांस करने का टाइम होता है, पार्टी करने का टाइम होता है. पार्टी

0: फ्रेंड्स, आपके इंस्टाग्राम एल्गोरिदम पे क्या आ रहा है? पता है मेरे एल्गोरिदम पे क्या आ रहा है? मेरे एल्गोरिदम पे, आई डोंट नो व्हाट इज दिस न्यू ट्रेंड ऑफ दिस एआई सब्जी वाली वीडियोस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई सब्जी बना रहा है, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जियां हु आर प्लेइंग पीपल, एंड देन एआई इज जेनरेटिंग दीज लाइक स्टोरी वीडियोस कि भाई भिंडी ने आलू को धोखा दे दिया और आलू ने शिमला मिर्च के साथ रिलेशनशिप बना लिया और फिर उसमें टमाटर दुखी हो गया, ऐसे करके ना आपने देखी, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज दिस कंटेंट ऑफ लाइक इंस्टाग्राम. मतलब एक जमाने में होता था कि एक्चुअली लोग कंटेंट बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. आज के एआई के जमाने में कुछ भी हो रहा है. देन एक सब्जी के अलावा देन देर इज दिस बिल्ला बिल्ली की स्टोरी. बिल्ली लीव्स बिल्ला नंबर वन फॉर बिल्ला नंबर टू. बिल्ला नंबर वन गेट्स रियली सैड, चेंजेस इज लाइफ, गोज टू द जिम, वर्क्स आउट, बिल्ड्स एब्स, गेट्स सुपर रिच. देन बिल्ली कम्स बैक, बिल्ला गोज गेट लॉस्ट, मेरे को दूसरी बिल्ली मिल गई. ये वाले वीडियोज भी आ रहे हैं मेरे ए आई इंस्टाग्राम पे. आई मीन अभी मैंने, द रीजन आई एम सेइंग इज आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग व्हाइल दैट सॉन्ग वाज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, यू नो डूम स्क्रोलिंग जैसे हम सभी करते हैं, और उसमें आया एक प्याज, लेडी प्याज है बाय द वे. दिस मिस प्याज गोज टू द डर्मेटोलॉजिस्ट, गेट्स अ लेजर फेशियल डन, एंड सडनली उसकी जो बाहर की जो कोटिंग ना उसकी जो सूखी वाली जो प्याज का जो छिलका है वो छिलका निकल के नाउ प्याज इज ऑल वाइट एंड शाइनी. नाउ शी इज नॉट अ ब्राउन प्याज एनी मोर, शी इज अ वाइट प्याज. एंड देन द अदर प्याज, द बॉय प्याज इज लुकिंग एट हर फ्रॉम द बैकग्राउंड, कहते हैं हाँ ये तो मेरी बीवी है प्याज. कुछ भी हो रहा है यार. आई मीन आई स्टिल वॉच्ड इट, आई एम क्रिटिसाइजिंग इट, बट आई स्टिल वॉच्ड इट बिकॉज इट वॉज फनी. मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू रफी एंड सफी, एंड आई थिंक दे आर डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू देयर मम्मी सुरैया जी. दिस सॉन्ग गोज आउट टू यू.
1: तू है सौतन नेम की पाठशाला प्रेम की, हम अंगूठा छाप.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो।
8: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week, plus 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99, and 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco, offer valid till 19 July only.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में सब संभाल लेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
11: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग फन एशिया रेडियो।
12: And we are back. You are listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. बस एक ही घंटा बचा है मेरे साथ, मैं आपके साथ सिर्फ 9 बजे तक हूँ, तो कम बातें ज़्यादा गाने। लेकिन बातों से मुझे याद आया फ्रेंड्स कि आपको, आपकी हेल्थ कैसी है, यू नो, इज़ अ गुड। आई एम श्योर आपके सबके पास इंश्योरेंस है, एंड देन यू नो एवरी टाइम यू हैव टू बुक अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, कितना टाइम लग जाता है, डजंट इट टेक लाइक फॉर एवर। एक बार ना मेरा विजडम टूथ का कोई एक प्रॉब्लम हो रहा था एंड इट गॉट इन्फेक्टेड, तो मैंने बोला कि भाई इसको निकलवाना है, तो उन्होंने बोला हाँ जी ओरल सर्जरी है, तो मैंने कहा ठीक है करो ओरल सर्जरी, वट एवर, कितने पैसे लगेंगे जो भी है। तो फिर उन्होंने बोला अपॉइंटमेंट 6 महीने बाद है। मैंने कहा 6 महीने बाद, तब तक क्या मैं, मेरे से खाया नहीं जा रहा है यहाँ पे, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, ढंग से पानी भी नहीं पिया जा रहा है, आप समझते हो मैं 6 महीने वेट करूं, तब तक आप निकालोगे अपना टाइम और मेरा दांत निकलवाओगे? मैंने कहा भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे नहीं करना। तो फिर उन्होंने मुझे एक वो एंटीबायोटिक दे दिया, पेन किलर दे दिया। उसके अगले महीने थैंकफुली मुझे इंडिया आना था, तो फिर मैं इंडिया गई। इंडिया में मेरे पड़ोस वाला जो डेंटिस्ट था, वेरी वेरी क्वालिफाइड, मेरी मम्मी भी उनके पास बहुत सालों से जाती है, मैंने बोला डॉक्टर जी ये मेरे दांत में ये इन्फेक्शन हो गया, ये आधा मेरे, इट्स लाइक कटिंग इन टू माई चीक, तो व्हाट डू यू डू? इज लाइक इसको निकाल देते हैं, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन है। मैंने कहा ठीक है कब आऊँ मैं, मतलब एक कहता अभी कर, अभी बैठो अभी निकाल देता हूँ। मैंने कहा साथ ही साथ सेम डे फर्स्ट विजिट, सेम डे ओरल सर्जरी, यार वी विल जस्ट डू इट राइट अवे. और मैं कितने मुझे आई थिंक 3,000-4,000 रुपए या कुछ पड़े. फटाफट उन्होंने 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा वो एक विजडम टूथ निकाल दिया, विच वॉज सो अनोइंग. एंड देन इट जस्ट लाइक हील्ड इन लाइक 2 weeks. तो गाइज अगर आपकी भी वैसी सिचुएशन है, देन यू नो वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज दे आर गोइंग टू स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट फॉर अ होल 30 minutes, नॉट 5 minute, 10 minute. आई मीन अमेरिकन डॉक्टर्स वी ऑलरेडी नो इट, जस्ट दे आर जस्ट सो फास्ट विद एवरीथिंग. दे विल मेक श्योर दैट योर अपॉइंटमेंट इज फॉर 30 minutes, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. एट पैशन हेल्थ केयर यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, योर फैमिली. And this is for you and your family and for the health of our community. We are all a Fun Asia community, okay? 30 minutes is all it takes to complete your annual physical. So, agar aapko koi bhi, jo bhi underlining problems hai, which you haven't gotten taken care of, just call them up and have them take care of it, okay? Whether it's anxiety care, fibro scan for alcohol-related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and more, everything is available at Passion Health. Schedule your appointment today. Call 214-666-6259 to book your appointment. Your health is their passion. Passion Health Primary Care. Okay? So, guys, make sure you give them a call if you need health concerns. Moving on, आगे बढ़ते हुए मुझे ना कुछ हफ्तों पहले, आई मीन आई लव द फैक्ट दैट आई हैव सो मैनी रेगुलर लिसनर्स हियर ऑन माई शो. आप मेरा शो सुनते हैं, यू आर एंजॉइंग इट, यू आर एंजॉइंग एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग, एंड आई लव दैट यू ऑल रिक्वेस्ट मी फॉर सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग. एंड मुझे लगता है कई बार ना अपने ऑडियंस से बात करके कि मैं आपको बिसाइड्स द रेडियो मैं पर्सनली भी जानती हूँ आप सबको, एंड आई लव दैट. तो उन्हीं में से एक लिसनर है राणा जी. तो राणा जी के पोते का जन्मदिन था कल 17 जुलाई को. तो राणा जी ने ना मेरे को कम से कम एक महीने पहले इनवाइट किया, ठीक है. उन्होंने मुझे रेडियो पे कॉल किया, बोला एपी जी आपको आना पड़ेगा, 17 जुलाई को है, हम यहीं पे कर रहे हैं वगैरह वगैरह. तो मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, पक्का पक्का. और तब ना रेडियो पे बात करते करते हम लोग यहाँ पे गाने लगाते हैं, गिव अवे होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ होता है कि क्या बोलना है, एड्स बोलने हैं वगैरह वगैरह. उसमें करते करते मैंने अपने कैलेंडर में डालना भूल गई, और मैंने क्योंकि कैलेंडर पे नहीं डाला तो मेरे दिमाग से कम्प्लीटली निकल गया. तो राणा जी ने मुझे अभी कॉल किया, कहते आप आए नहीं कल. मैंने कहा ओहो, मेरे को याद है, मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर जाऊँगी, पर मेरे ना दिमाग से पूरी तरह से निकल गया, मैं नहीं तो पक्का आती. और क्योंकि मैंने उस टाइम पे रेडियो के बीच में काम इतना रहता है, बिल्कुल मैं भूल गई. तो राणा जी ये गाना आपके लिए, मुझको माफ कर दीजिए राणा जी, आप ये गाना जी सुनिए.

अभी तो अब राणा जी सॉरी, नेक्स्ट ईयर जरूर याद रखूंगी मैं, एंड आई विल रिमेम्बर टू कम टू एनी बर्थडे इवेंट्स और एनी पार्टी इवेंट्स. अगर आप मुझे बुलाना चाहें जरूर, आई मीन आई एम मोर देन हैप्पी. आई लव सोशलाइजिंग बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ सोशल बटरफ्लाई. तो थैंक यू सो मच फॉर द इन्वाइट राणा जी. आपके पोते के लिए मेरी तरफ से बहुत ही बहुत ही बहुत ही जन्मदिन की शुभकामनाएं. इट्स हिज फर्स्ट बर्थडे एंड वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. तो जब वो बड़ा हो जाएगा, अभी तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा उसको जरूर बोलना कि इपी द हिप्पी फ्रॉम फाइनेशिया हैज विश्ड हिम वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. तो मूविंग ऑन गाइज, वी आर कीपिंग द पार्टी स्पिरिट्स अप. दिस इज बैंग बैंग फ्रॉम द मूवी बैंग बैंग, ऑफ कोर्स.

this next song goes out to Zimran. Zimran, all the best for your new beginning. Zimran is off to a different city tomorrow. और हम उनकी आवाज़ और उनके कॉल्स और उनके रिक्वेस्ट बहुत मिस करेंगे. आई होप यू हैव ए वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द न्यू करियर दैट यू आर स्टेपिंग टूवर्ड्स. दिस इज अ सॉन्ग बंधु डेडिकेटेड टू यू.

गाइज वी विल कंटिन्यू दैट सॉन्ग, लेकिन वो सॉन्ग बजाने से पहले डिड यू गाइज नो होको इज फाइनली हियर इन नॉर्थ टेक्सस? दैट इज राइट, होको इज फाइनली हियर इन नॉर्थ टेक्सस एंड दे हैव लाइक 6 लोकेशंस ऑल अक्रॉस अमेरिका, ऑल द मेजर सिटीज और द स्टेट्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, दे आर फाइनली हियर एंड आई एम श्योर वेन यू हियर द नेम इट ब्रिंग्स बैक अ फ्लड ऑफ मेमोरीज. दैट्स वॉट होको हैज बिन. इट इज बेसिकली अ फेवरेट फॉर जेनरेशंस एंड नाउ इट्स फाइनली हियर. वेदर यू आर क्रेविंग द लेजेंडरी चनापुड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, फ्लेवरफुल करीज, या फिर द फेमस होको कोल्ड कोको, विच आई रियली वॉन्ट टू ट्राई बाय द वे. People are swearing by it, so you don't have to wait for your next trip to India anymore. Visit HOCO at 2693 Preston Road, Suite 1000, Frisco, Texas 75034, and experience the authentic flavors that have made it to one of India's most loved food brands. For the full menu, visit HOCO.US. That is right, HOCO.US. Bhai, घर से खाके मत आना, कम हंग्री एंड लीव विद अ टेस्ट ऑफ इंडिया. आई डोंट नो अबाउट यू गाइज बट आई थिंक द मेन्यू इज नॉट जस्ट टिपिकल देसी इंडियन, इट इज एक्चुअली चिपोटले मीन्स मीट्स इंडियन फूड. सो आई लुक्ड एट देयर बोल्स एंड देयर रैप्स एंड दे ऑल साउंड सो गुड. देयर इज अ गलौटी कबाब बोल विच आई रियली रियली रियली वॉन्ट टू ट्राई. मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है गलौटी कबाब सुन के. पता है यहाँ पे DFW में अच्छे गलौटी कबाब, मतलब कितने साल हो गए मैंने खाए हुए अच्छे गलौटी कबाब. दिल्ली में तो हर कोने में मिल जाते हैं, मतलब यू कैन फाइंड इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बट यहाँ नहीं मिलता. वही चिकन टिक्का, वही 65, वही तंदूरी चिकन वगैरह वगैरह. अफगानी चिकन मेरे ढंग से मिलता. तो गाइज आई रियली वॉन्ट गो ट्राई आउट दर गलौटी कबाब बिकॉज सम आई लाइक सॉफ्ट फूड. यू डोंट नीड टू नो दैट बट आई सॉ दैट एंड आई एम रेविंग अबाउट इट बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई सॉ. सो You should go check out HOCO. तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए. In case you haven't eaten dinner, it's Saturday night. I think this is a good time to make a plan.

गाइस वी आर बैक, इट इज 8:33 ऑन द क्लॉक एंड मैं आपके साथ सिर्फ आधे घंटे और रहने वाली हूँ. आई होप यू आर इंजॉयिंग द म्यूजिक दैट वी आर प्लेइंग फॉर यू. आगे बढ़ते हुए गाइस, आपने सारे एडवर्टाइजमेंट्स तो सुन लिए, मेरे पास और कुछ बोलने के लिए है नहीं अभी. आई एम अ लिटिल टायर्ड, आई नो यू ऑल आर प्रीटी टायर्ड, सो स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू अमेजिंग म्यूजिक, बिकॉज दैट्स ऑल वी केयर अबाउट. इट्स सैटरडे नाइट. Let's have some fun.

गाइज, मेरे ना फीड पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा रील आया एंड आई थॉट आई हैव टू शेयर इट विद यू. इट वॉज बेसिकली विक्टोरियन जमाने के स्लैंग्स. भाई आज के जमाने में स्लैंग्स, बच्चे जो बोलते हैं 6-7 या फिर डलूलू इज द न्यू सलूलू, इस तरह से स्लैंग्स तो दे आर वेरी पॉपुलर, है ना. तो आई मीन अ लॉट ऑफ दीज स्लैंग्स ऑल्सो हैव सम कस वर्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट. जैसे आई मीन आई वी कॉन्ट रियली से कस वर्ड, सो वी आर नॉट गोना से इट, लेकिन बच्चे आजकल ये भी यूज़ करते हैं लाइक बैट, लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ या दे से बैट. तो विक्टोरियंस ऑल्सो हैड देयर ओन स्लैंग्स एंड आई एक्चुअली लाइक सम ऑफ दिस. सो इंस्टेड ऑफ लाइक द लूलू मेन कैरेक्टर एनर्जी, लाइक दीज आर द स्लैंग्स दैट आर यूज टुडे. दे यूज समथिंग नोन एज कॉफी सिस्टर्स, विच दे रेफर टू एज बेस्ट फ्रेंड्स. तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अप एंड सेइंग हे बेस्टी लेट्स गो गेट समथिंग टू ड्रिंक और लाइक लेट्स गो शॉपिंग, दे वुड से कॉफी सिस्टर्स एंड आई आर गोइंग शॉपिंग एंड दैट्स प्रीटी कूल. और फॉर एग्जाम्पल दे टेल ईच अदर टू कीप देयर हेयर ऑन, विच मीन्स गेट इट टुगेदर गर्ल्स, लाइक कीप योर हेयर ऑन. और अगर बहुत ही ग्लूमी सा वेदर है, अपेरेंटली द नेम फॉर दैट ग्लूमी रेनी वेदर डे इज कॉल्ड शैम्पेन वेदर, क्योंकि शराब मतलब शैम्पेन आप मतलब जिस दिन बारिश ज़्यादा होगी उस दिन चाय की जगह आप शराब पिए. आई डोंट नो, इट वॉज लाइक अ ब्रिटिश थिंग, आई डोंट गेट इट. शैम्पेन वेदर, आई डोंट नो इफ आई वॉन्ट कीप इट, बट आई लाइक द वे इट इज, इट साउंड. और जिस दिन अगर आपका मूड खराब है उस दिन यू से हे आई हैव गॉट द मॉर्ब्स, आई एम टोटली इन अ बैड मूड, आई हैव गॉट द मॉर्ब्स. आई थिंक आई लाइक दैट वन. आई थिंक द वर्ड मॉर्ब्स कम्स फ्रॉम द वर्ड मॉर्बिड, कि जिस दिन आपका मूड बहुत खराब है, इट्स लाइक समटाइम्स पीपल से इट्स मॉर्बिड ओवर हियर. सो दैट्स व्हाट आई थिंक दैट इट, दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम, है ना. व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट वांट टू स्टील सम ऑफ दैट, स्टार्ट अ ट्रेंड, व्हाई फॉलो द ट्रेंड?

भाई वाई ओनली आंटी यार, इवन अंकल वॉन्ट्स टू डांस एंड दादी जी ऑल्सो वॉन्ट्स टू डांस एंड दादा जी ऑल्सो वॉन्ट्स टू डांस एंड चाचा जी एंड चाची जी एंड मामा जी एंड मामी जी, दे एवरीबडी शुड डांस, है ना? बिकॉज डांस करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, जैसे पार्टी करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है. अभी मैंने थोड़ी देर पहले राणा जी ने, मैंने बोला राणा जी ने मुझे इन्वाइट किया, उनसे इंस्पायर्ड होके मुझे एक और इन्विटेशन आ गया कल के लिए. आई एम नॉट गोइंग टू से द नेम बिकॉज ही हैज़ रिक्वेस्टेड कि मैं उनका नाम ना लूँ, लेकिन मैं उन्होंने बोला कि आप कल आइए मेरे घर पर, पार्टी करेंगे. मैंने कहा अच्छा, वॉट इज़ दी ओकेजन? तो कहते हैं कि दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वन यू गाइज, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस, बट आई थिंक इट इज़ अ बहाना, बट इट डजेंट मैटर. यू नो वॉट, बहाने नहीं चाहिए होते यार मिलने मालने के लिए एंड पार्टी व शादी करने के लिए. ओके, सो द रीजन फॉर द सेलिब्रेशन इज इट इज़ द 10th एनिवर्सरी फ्रॉम द ब्रेकअप फ्रॉम द थर्ड गर्लफ्रेंड. वाह वाह वाह वाह, कितनी लंबी, मतलब कितना लंबा ओकेजन है. 10th एनिवर्सरी, मतलब इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया कि आपको आपकी थर्ड गर्लफ्रेंड ने, उसकी आप 10वीं एनिवर्सरी की पार्टी मना रहे. वाह, ये होता है ना पार्टी करने का. बर्थडे शर्टडे तो सबका आता रहता है, ब्रेकअप का हर साल मनाने का ये अलग मौका है.

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
2: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फनेशिया।
3: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

ताली चलते प्यार सोनिए, ताली चलते प्यार, ऐ ताली चलते प्यार।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: Don't miss out on the dance party of the year. Join the Club Phanasia Revolution and let the good times roll.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
3: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
4: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
3: नहीं
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है
3: नहीं
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
3: वो भी नहीं
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG FinTax योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
5: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media Partner, Fun Asia Network.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: Don't miss out on the dance party of the year. Join the Club Fun Asia Revolution and let the good times roll.

0: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: Don't miss out on the dance party of the year. Join the Club Fun Asia Revolution and let the good times roll.

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Funasia.
1: Hi, this is Vinay Pathak, and you are listening to me on Funasia Radio.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: सम जर्नीज बिगिन विद साइलेंस एंड सम बिगिन विद डिवोशन. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
8: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: Club Fanasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dances.
2: कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना

0: गया हमारा रेवेन्यू, डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer, enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: हाय, दिस इज श्रद्धा पंडित एंड यू आर ट्यून्ड इनटू फन एशिया रेडियो।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
4: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

अतकुड़ी अतकुड़ी अतकुड़ी चाकू तलवार ये छुरियां कुड़ी अधिकार मैन कर दे नमस्ते ब्लॉन्ड लट्टी नते चिटियां हाय कुड़ी हेलो कुड़ी मजा मजा ले लकुड़ी सॉल्टी स्पाइसी ते मिठियां।

0: मैं मंदर क्यों जावा, मेरा यार खुदा है। मैं मस्जिद क्यों जावा, मेरा यार खुदा है।
1: बिल्लो।

नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी। मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
6: हाय, आई एम शाहरुख खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया।
7: झुकेगा नहीं और फन एशिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: आकर

Ow. Ah, jabat dah.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: हाय अभिषेक।

0: अब तेरी बात।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरफ हूँ।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: FM turns up the heat in Dallas.
1: हर एक सिटी में

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
9: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
10: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
11: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
9: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं.
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं.
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं.
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax.

संडे गपशप के तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत. वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ संडे गपशप ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एक रूप, आपका स्वागत करती हूं. वार्म वेलकम, स्वागत है आज एक और नया खूबसूरत दिन, नया संडे एंड नया शो, वेल न्यू एपिसोड लेकर आई हूं आज आपके लिए यहां पर. जुलाई 19th इज़ द डेट, यानी कि थर्ड संडे है. इसके बाद एक और संडे आएगा जो कि 26 जुलाई होगा, और फिर उसके बाद ओ माय गुडनेस वो भी इन द एथ मंथ, और अगस्त भी बस आने वाला है. टाइम ऐसा ही भागता जा रहा है. अच्छा टाइम होता है तो जल्दी जल्दी भाग भी जाता है. तो चलिए, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. आज एक नया दिन है आज के लिए. शुभकामनाएं आगे आने वाले जो साल में दिन बचे हैं उनके लिए शुभकामनाएं. एंड देन ऑफ कोर्स वी ऑल विल बी विशिंग ईच अदर फॉर द न्यू ईयर एज वेल. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो, और बस आप मुझे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं. 7 to 10 ये शो आता है, और घड़ी में 7:10 हो रहे हैं. 3 घंटे का ये शो होता है. संडे के संडे मैं आपसे यहाँ पर मिलती हूँ. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. सो कीप द कॉल्स कमिंग इन. वैसे मुझे कॉल्स आने भी शुरू हो गए हैं. आपके फरमाइशी सॉन्ग्स मैं यहाँ पर लाइनअप कर रही हूँ. हियर यू गो, दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द डे.

फिल्म का नाम परवरिश दैट केम आउट इन 1958. इसमें राज कपूर साहब, माला सिन्हा जी एंड महमूद, द मोस्ट फेमस कमेडियन ऑफ द यस्टर ईयर्स, महमूद साहब भी थे इस मूवी में. और ये मूवी के जो सॉन्ग्स इतने अच्छे, इस का जो म्यूज़िक है वो आई थिंक इतने कोई बहुत मेन स्ट्रीम ऐसे कंपोजर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं रहे जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हो, लेकिन फिर भी लोग जानते थे इनको. एंड दत्ताराम वाडकर, इन्होंने ये फिल्म का म्यूज़िक दिया. द म्यूज़िक डेफिनेटली, स्पेशली दिस सॉन्ग बिकेम सो पॉपुलर. और जो हैं दत्ताराम वाडकर, जिनके जिन्होंने इस मूवी का म्यूज़िक दिया था, वो म्यूज़िक अरेंजर थे एंड म्यूज़िक डायरेक्शन भी दी थी उन्होंने. और मोस्टली वो जो है शंकर जयकिशन, जो म्यूज़िक जोड़ी थी, कंपोजर्स की जो जोड़ी थी, उनके साथ इनकी एसोसिएशन काफ़ी लंबी चली थी. एंड उन्हीं के साथ जो है यारी दोस्ती बहुत गहरी थी. सो दत्ताराम वाडकर जी ने इस फिल्म का म्यूज़िक भी दिया था, लता जी ने, एंड मनाडे साहब ने गीत गाया. एंड द सॉन्ग इज सो पॉपुलर एंड वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन एंड द एनवायरमेंट. एज इन हमारे दिलों में खुशी आ जाती है कि मस्ती भरा है समा, तो हमारे दिल का भी जो समा है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है. अच्छा, जो अगली रिक्वेस्ट आई हुई है, फिल्म का नाम है कुदरत. एंड स्पेशली जो हमारी लिसनर है जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, वो कहती हैं कि परवीन सुल्तान जो फीमेल वर्जन है, फीमेल सिंगर वाली जो वर्जन है, वो उन्होंने सुनने की रिक्वेस्ट की है. रीटा जी, दिस इज फॉर यू. फिल्म का नाम कुदरत, हमें तुमसे प्यार कितना, परवीन सुल्तान.

ये वाला जो सॉन्ग जब परवीन सुल्ताना जी ने गाया तो इतना पसंद किया ऑडियंस ने, इतना पसंद किया फिल्म मेकर्स ने. एवरीबडी हैड सच एन एडमिरेशन फॉर परवीन सुल्ताना जीज वॉइस, एंड इनको इस सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला. कुदरत फिल्म जो आई थी 1981 में, बेगम परवीन सुल्ताना जी बहुत ही क्या जानी मानी हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर रही हैं, एंड इन्होंने जो है वॉइस इनकी जो स्पेशली जो ये गज़ल्स जो इनकी नॉट गज़ल्स इनकी पूरी जो जॉनराज गाते हैं, पर ये जो है स्पेशली नोन रही हैं क्लासिकल वोकल्स के लिए. और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री से भी नवाजा है, पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है. असम में ये बॉर्न हुई थी, नागांव, एंड देन वहाँ पर इन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग है पिताजी से ली और फिर आगे चलकर जो है उस्ताद दिलशाद खान साहब से ली, और फिर उन्हीं से इनकी शादी भी हुई. सो दिस इज़ परवीन सुल्तान जी, और उन्हीं की आवाज़ में ये सॉन्ग सुन रहे थे. एंड लाइक आई मेंशन्ड अ फ्यू मिनट्स अगो कि इनके जो जॉनराज हैं वो गज़ल भी रहे हैं, ठुमरी भी इनकी काफ़ी पॉपुलर है और भजन भी इन्होंने गाए हैं. सो पद्मश्री एंड पद्म भूषण से इनको जो है नवाजा हुआ है. थैंक यू रीटा जी, आपने इतने अच्छे सॉन्ग की रिक्वेस्ट की. अब जो अगला सॉन्ग है ना वो मुझे थोड़ा सा बाईपास करना पड़ेगा, बाकी सॉन्ग्स के आगे लाइन में लेकर आना पड़ेगा पर्पजली, बिकॉज जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है वो पार्किंग लॉट में वेट कर रहे हैं. तो मैं उन्होंने तो नहीं कहा कि आप ये सॉन्ग लगा दीजिए राइट अवे, बट आई जस्ट फेल्ट कि बहुत गर्मी है तो पार्किंग लॉट में मत वेट कीजिए. हियर यू गो, दिस इज़ योर सॉन्ग, अपना ये वाला सॉन्ग एंजॉय कीजिए, एंड देन सो यू कैन गेट टू वर्किंग एंड गोइंग वेर एवर यू आर इन द पार्किंग लॉट फॉर रमैया वस्तावैया. फिल्म का नाम श्री 420.

0: ये जो फिल्म में पेयरिंग थी राज कपूर साहब एंड नरगिस जी की, ये इतनी कमाल की, इतनी मैजिकल पेयरिंग थी. दे हैड अ मैजिक ऑन स्क्रीन दैट वाज आल्सो ट्रांसलेटेड ऑफ स्क्रीन. और ये इनकी कलेबोरेशन इतनी स्ट्रांग एंड सॉलिड रही, जो इन्होंने मूवीज़ में इकट्ठे काम किया. ये साझेदारी जो है शुरू हुई थी 1948 में आग फिल्म, जिसमें ये दोनों इकट्ठे आए थे नज़र. एंड देन 16 ईयर्स में, वेल 8 ईयर्स में इन्होंने 16 फिल्में इकट्ठे की, विच वाज ऑन एन एवरेज 2 फिल्में एक साल में. और ये जो है बहुत ही राज कपूर की जो मूवीज़ में जब भी नरगिस जी काम करती थी, दे वर सुपर हिट फिल्म्स. एंड राज कपूर साहब जो फिल्मों का कैरेक्टर जो होता था, जो स्टोरी होती थी, वो नरगिस जी का जो रोल था वो उनकी रियलिटी, जो उनकी पर्सनालिटी थी रियल में, उसके अराउंड ही वो उस फिल्म का कैरेक्टर भी लिखते थे. बहुत ही क्रिएटिव पार्टनरशिप थी दैट आल्सो कन्वर्टेड इनटू इमोशनल पार्टनरशिप. एंड ये जो 8 साल थे बहुत ही गोल्डन ईयर्स रहे हिंदी मूवी इंडस्ट्री के लिए. आवारा, श्री 420 और जैसी कई इन्होंने अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया. आई बी राइट बैक.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
4: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
8: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
9: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स. Roll it again.

वेलकम बैक, स्वागत, नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? दिस इज़ आरजे एक्रो वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन. शो का आधा घंटा हो चुका है एंड अभी 10 o'clock तक ये शो आता है. 7 to 10 संडे मॉर्निंग, एवरी संडे मॉर्निंग यहाँ पर मैं होती हूँ. अनलेस आई एम टेकिंग अ डे ऑफ, ऑफकोर्स, तो फिर मैं नहीं आती यहाँ पर. बट दैट हैपन्स जस्ट मे बी अ फ्यू टाइम्स इन द होल ईयर. मोस्टली तो होती हूँ यहाँ पर एंड जो है इस शो में इतने अच्छे सॉन्ग्स और इतना जो है आपका रिस्पॉन्स रहता है ओवरवेलमिंग एंड दैट डेफिनेटली पुल्स मी हेयर एवरी संडे. एंड आई होप कि जो मैं जो यहाँ पर सॉन्ग्स प्ले करती हूँ आप ही की चॉइस के, तो आपको तो ऑफकोर्स अच्छे लगते ही हैं. द अदर लिसनर्स दैट आर ट्यून्ड इन एज वेल, दे लाइक दोज सॉन्ग्स. एंड देन बस यूँ ही चलता है ये शो. 3 घंटे, पहले 2 घंटे के लिए आता था, अब इस साल से 2026 से 3 घंटे का हो गया है ये शो. एंड इट हैज़ जस्ट प्रोवाइडेड ऑल ऑफ अस, इट प्रोवाइड्स अस ऑल विद सो मच म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ चिट चैट्स ऑन एंड ऑफ एयर. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. प्लीज़ कीप द कॉल्स कमिंग इन. दिस इज़ आरजे एक्रो. अब जो अगली रिक्वेस्ट है मेरे पास, वो फिल्म का वो आई हुई है. फिल्म का नाम है प्रोफेसर, जिसमें शमी कपूर साहब थे एंड आई थिंक उनके साथ कल्पना जी थी.

जैसे इतनी वेलवेटी और इतनी स्मूथ आवाज़ जो ये मोहम्मद रफ़ी साहब की है, इतना मज़ा आता है सुन के. इट्स लाइक अ वेरी स्मूथली फ्लोइंग रिवर जो बस अपने पेस पर चलती है, अपने अपने मुकाम पर पहुंच जाती है. बिल्कुल वैसी ही आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की, इतनी अच्छी सुरीली, एंड इट जस्ट कीप्स गोइंग ऑन फ्लोइंग सो स्मूथली सीमलेसली. और ये वाला जो सॉन्ग ए गुल बदन, फिल्म का नाम प्रोफेसर, शमी कपूर साहब पर फिल्माया गया ये सॉन्ग, एंड उनके साथ उनकी लीडिंग लेडी कल्पना. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. यू कैन कॉल एजी फिनटेक्स एट 469-942-9888, or you can visit their website, which is agfintechs.com. मोहम्मद रफ़ी साहब से अब हम बढ़ते हैं. एक्चुअली दो सॉन्ग्स बैक टू बैक किशोर कुमार साहब के हैं, एंड देन फिर हम वापस से मोहम्मद रफ़ी साहब पर ही आ जाएंगे. एंड आई एम जस्ट सेइंग ऑल दिस, आई एम गोना प्ले दीज सॉन्ग्स इन द ऑर्डर दैट दे हैव अराइव्ड. ये वाला सॉन्ग है कितने अटल थे तेरे इरादे, किशोर दा ने गाया है ये गीत. फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो.

0: किशोर कुमार साहब की आवाज में गाया हुआ ये वैसे तो एक काइंड ऑफ सैड सॉन्ग कह सकते हैं, बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग है. इट इज़ अ पैशनेट सॉन्ग, लेकिन ये इतना पॉपुलर हुआ अनलाइक सम सैड सॉन्ग्स इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड मूवी. ये वाला थोड़ा फास्ट पेस्ड है और इसमें काफ़ी पैशन सुनाई दे रहा है. एंड बिकॉज ऑफ द वे इट्स अरेंज्ड, इसका म्यूजिक ओपी नैयर साहब ने दिया और किशोर दा ने ऑफकोर्स इसको बहुत खूब निभाया. जॉय मुखर्जी एंड तनुजा जी की ये फिल्म जिसका नाम एक बार मुस्कुरा दो, और हमारे लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की. एंड जैसे कि मैंने कहा था कि बैक टू बैक किशोर दा के सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आई हुई है, ये वाला अगला सॉन्ग जो फिल्माया गया है जितेंद्र यानी कि जंपिंग जैक के ऊपर.
1: दिलों का न पूछो सनम आपका.

मोस्ट ऑफ द सिंगर्स जो इंडस्ट्री में आते हैं सबके पास फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, म्यूजिकल सिंगिंग का बेस होता है और काफ़ी उनको जो है तालीम हासिल उन्होंने की होती है, उसके बाद इतने बड़े पर्दे पर जो है आवाज़ उनकी फिर गूंजती है प्लेबैक सिंगिंग के फॉर्म में। अगर बात करें किशोर कुमार साहब की, तो इनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, इन्होंने बस अपना टैलेंट, अपना पैशन और अपनी हॉबी के थ्रू जो है अपनी आवाज़ इतनी इनकी अच्छी थी, बहुत रियाज़ करते थे, बहुत वर्सेटाइल इनकी वॉइस थी। एंड मूवी इंडस्ट्री में, हिंदी मूवी इंडस्ट्री में इनके कितने सारे सॉन्ग्स हैं जिनको हम बस प्ले करते रहें, ख़त्म ही नहीं होंगे। बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर एंड ऑल्सो वेरी वर्सेटाइल वॉइस इनकी प्लेबैक सिंगिंग में भी। इन्होंने राजेश खन्ना साहब को इतने ट्रमेंडसली सक्सेसफुल सॉन्ग्स दिए हैं और ये दोनों की जो जोड़ी थी किशोरदा एंड राजेश खन्ना साहब की, बहुत पॉपुलर रही। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो राजेश खन्ना साहब के होते थे वो किशोरदा ही गाते थे। फॉर एग्जांपल दिस वन, जिसकी अभी रिक्वेस्ट आई है, और ये फिल्म का नाम है आपकी कसम। 9722355555 is the number to the studio।

50s से लेके 70s तक जो एस डी बर्मन साहब की ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग रही किशोरदा के लिए, एंड उन्होंने जो है देवानंद साहब की वो वॉइस बन गए 50s से लेके 70s तक. और फिर जब आर डी बर्मन साहब आए इंडस्ट्री में एंड उन्होंने जो जब गीतों को कंपोज करना शुरू किया, तो किशोर कुमार साहब ने राजेश खन्ना जी के लिए अबाउट 245 सॉन्ग्स गाए. व्हाट अ बिग नंबर. जी हाँ, ही सैंग अबाउट 245 सॉन्ग्स फॉर राजेश खन्ना अंडर द सुपरविजन ऑफ आर डी बर्मन. और फिर उसके बाद जितेंद्र, देवानंद तो ऑफकोर्स थे ही, अमिताभ बच्चन एट्सेट्रा, इन सब के लिए उन्होंने इतने सारे अच्छे मेमोरेबल सॉन्ग्स गाए. सो दिस इज द कलेबोरेशन ऑफ राजेश खन्ना एंड किशोरदा.

ये फिल्म की जो एंडिंग थी इतनी ट्रेजिक एंडिंग थी. शुरुआत तो बहुत अच्छी थी. म्यूजिक कितना अच्छा. वेल एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल. आपकी कसम जो आई थी 1974 में, राजेश खन्ना जी का ट्रेंड, उनका स्टाइल, उनका फैड, उनका क्रेज़ पीक पर था. एंड ये फिल्म जो उन्होंने मुमताज़ जी के साथ की, जिसका नाम आपकी कसम, ब्यूटीफुल लव स्टोरी हाउ एवर विद अ ट्रेजिक एंड. एंड जो है इसमें

0: ब्यूटिफुल लव स्टोरी, हाउ एवर विद अ ट्रेजिक एंड, एंड जो है इसमें काफ़ी लाइफ की रियलिटीज़ को टच किया है कि जब अच्छा टाइम होता है तो उसको संभाल के रखना चाहिए, अपने रिश्तों को, अपने अच्छे टाइम को, अपने माइंड को अगर संभाल लिया आपने अच्छे टाइम पर, तो फिर जो है आप डी ट्रैक एंड डी रेल नहीं होते। वही चीज़ इस मूवी में दिखाई थी। एंड वो जो शक करते हैं अपनी वाइफ पर, वो जो सस्पिशन है, वो जो नेगेटिव जजमेंट्स हैं, और फिर वो किस तरह जो है इनको अकेला छोड़ देता है जीवन में सब कुछ, व्हेन ही हैज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। सो ये सॉन्ग जिसकी रिक्वेस्ट की थी हमारी लिसनर ने, अजमीना जी ने, एंड दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ हर फेवरेट सॉन्ग्स। वो मेंशन कर रही थी कि वो ऐसे सॉन्ग्स उनको अच्छे लगते हैं बिकॉज़ इनके यूजुअली जो है मीनिंग्स काफ़ी डीप होते हैं, इनकी स्टोरी लाइंस बहुत अच्छी होती हैं। एंड सो या थैंक यू सो मच एवरीबडी, आप बहुत अच्छे सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई विल बी राइट बैक।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
10: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
13: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
14: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
13: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
14: और एंटरटेनमेंट,
13: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
14: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
13: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
15: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
16: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
16: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा।

0: सारे अकाउंट्स अपडेटेड?
1: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
5: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब। फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस। Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
6: I'm Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

0: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
1: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
0: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
2: बेटा 95% आए?
3: हाँ मम्मी।
2: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल।

Welcome back. You are tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is your host, RJ Krupp, welcoming you all once again. It is 8:06 in the studio clock, and the show is going to be here until 10 o'clock. Sunday gupshap jo lekar aati hoon usko main. And the studio phone number is 972-235-5555. And thank you so much aap sab ke phone calls ke liye. Aur bas yehi reiterate karungi. प्लीज कीप द कॉल्स कमिंग इन. आपके सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं और उनको मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ. PMJ Jewels के बारे में मैं आपको बता दूँ दैट दे आर इन टाउन, एंड डैलस वासियों की जो है अब वेट खत्म हो गई है. PMJ Jewels इज नाउ इन फ्रिस्को, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. They have stunning gold, diamond and bridal collections of every celebration and milestone. They associate themselves with the Mahesh Babu and Sitara Ghatama Neni. PMJ is a name trusted by generations. You should visit PMJ Jewels in Frisco on Main Street and discover a jewelry that tells you your story. July 19th is the date today. Today is the third Sunday, and next Sunday would be the fourth, of course, and then we will be in the eighth month of the year, which is going to be August. गर्मियों का टाइम चल रहा है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, एंड अगस्त की बिगिनिंग में स्कूल्स आर गोइंग टू रीओपन. तो बस गर्मियों की छुट्टियां 8 वीक्स, बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है. आई गेस जब तक यूज्ड टू होते हैं छुट्टियों के, तब तक जाने का भी टाइम हो जाता है वापस स्कूल. सो अब जो है अगस्त में फिर देन अगेन द ट्रैफिक ऑन द रोड्स, the regimented schedule for every day, and of course hoping for the weekend. To lekin ab jo hai the whole week is a weekend, so that's a good thing. Itna traffic bhi nahi hota sadkon par subah, so dheere dheere ab wo bhi change ho jayega. Agli jo request aayi hui hai wo hai film ka naam Sangam and ye wala song.

64 की ये इतनी सुपरहिट फिल्म जिसमें ये इतने ट्रियो जो था वो भी अपने आप में इतने सुपरहिट थे, तीनों ही एक्टर्स, राज कपूर साहब, राजेंद्र कुमार जो कि जुबली कुमार भी उनको कहा जाता था, एंड वैजयंती माला जी, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस विद सम ऑफ द बेस्ट डांसिंग स्किल्स, एंड उनको काफ़ी एक्ट्रेसेस ने आगे चलकर इंस्पिरेशन उनसे ली डांसिंग, जब डांसिंग की बात होती है, कोरियोग्राफी की बात होती है, तो द फ्यूचर जनरेशंस डू लुक अप टू हर, एंड वैजयंती माला जी जिनकी मैं बात कर रही हूँ. और ये जो है लव ट्रायंगल, सॉन्ग्स इस फिल्म के बहुत अच्छे थे एंड स्टोरी भी बहुत अच्छी थी. शंकर जयकिशन का म्यूज़िक रहा, राज कपूर साहब उन्हीं से ही सबसे ज़्यादा अपना काम करवाते थे एंड उनके साथ काफ़ी इन्होंने काम भी किया. और ये जो है राज कपूर साहब की सबसे पहली कलर फिल्म थी जिसके जो इसके जो फिल्म की जो शूटिंग थी वो यूरोप में हुई थी. ऑफ कोर्स इंडिया में तो हुई थी, एंड इसके इतनी ब्रेथ टेकिंग जो जो सीन्स थे, जो ब्यूटी दिखाई थी यूरोप की, वो इस फिल्म में देखी. ये वाला सॉन्ग बोल राधा बोल एंड मेरे मन की गंगा एट्सेट्रा, ये जो पूरा सॉन्ग हम सुन रहे थे, ये शंकर जयकिशन ने ही इसको कंपोज किया था. चलिए अब फटाफट से बढ़ते हैं अगले सॉन्ग की तरफ. जो हमारे लिसनर हैं उन्होंने बैक टू बैक दो सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट की हैं. सबसे पहले मैं थोड़ा पुराना वाला सॉन्ग प्ले करूंगी एंड देन द सेकंड रिक्वेस्ट दैट ही हैज़ मेड इज फ्रॉम अ फिल्म दैट केम आउट इन अर्ली 90s. AR रहमान साहब का म्यूज़िक होगा, बट लाइक आई सेड वो मैं सेकंड उनका जो है सॉन्ग वो मैं प्ले करूंगी. पहले ये वाला सॉन्ग है, उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की है, तेरी तलाश में.

हमारे सेम लिसनर ने जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, उन्होंने ये वाला सॉन्ग भी सुनने की रिक्वेस्ट की है और ये है रोजा फिल्म से. हियर यू गो, ए आर रहमान्स म्यूजिक.

ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना डेब्यू अजय देवगन के ऑपोजिट दिया था फूल और कांटे 1991 में, जब वो फिल्म आई थी एंड उसका जो एंट्री सीन था वेरी स्पेशली, जिसमें अजय देवगन दो मोटरसाइकिल्स पर एक एक अपनी टांग रख कर आते हैं कॉलेज में, ये वही मूवी में जो लीडिंग लेडी थी मधु, शी इज़ द सेम एक्ट्रेस जिन्होंने 1992 में रोजा में काम किया था। वैसे तो वो ओरिजिनली तमिल फिल्म ही बनी थी, उसको जो है हिंदी में डब किया था एंड इट बिकेम सच अ ह्यूज सक्सेस। और फिर इन दोनों फिल्मों के बाद मधु नोन फेस बन गई थी साउथ इंडियन फिल्मों में भी एंड बॉलीवुड फिल्मों में भी। बहुत ज़्यादा इन्होंने काम नहीं किया बट शी डज़ कम फ्रॉम अ वेल नोन फैमिली। ये जो है हेमा मालिनी जी की फर्स्ट कज़न है, दे डू शेयर अ वेरी क्लोज बॉन्ड बिकॉज इनके पेरेंट्स जो हैं वो सिबलिंग्स हैं। और आगे चलकर जब इन्होंने शादी की तो वो जो है थ्रू हर मैरिज ये जूही चावला की जो है रिलेटिव भी बन गई। थिंक इनके हस्बैंड और जूही चावला के हस्बैंड कजन्स हैं या समथिंग, दे आर रिलेटेड इन एंड दे आर इन द सेम फैमिली। सो मधु बहुत ज़्यादा फिल्मों में नहीं नज़र आई एंड इवन नाउ शी इज़ अ नोन नेम, शी इज़ अ नोन फेस, बट एज़ फार एज़ हर एक्टिव वर्क गोज़ इन द इंडस्ट्री शी डजन एक्टिवली वर्क। सो अपना करियर इन्होंने बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं किया, शी इज़ स्टिल अ सक्सेसफुल पर्सन ओवरऑल। सो हमारे लिसनर जिन्होंने बैक टू बैक ये दो सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट की थी वो मैंने प्ले कर दिए हैं। अब हमारी एक लिसनर है जो वेट कर रही हैं इस सॉन्ग की, फिल्म का नाम बूट पॉलिश।

0: ये मूवी तो शायद किसी ने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन ये सॉन्ग डेफिनेटली सबने ही सुना है. ग्रोइंग अप ये सॉन्ग सुनते थे अक्सर, समहाउ और दी अदर. एंड देन काफ़ी आगे बाद में जाकर पता चला इस फिल्म का नाम बूट पॉलिश. और इसमें एक्चुअली जो है ना, राज कपूर साहब ने इसको जो है काइंड ऑफ वो प्रोड्यूस तो किया ही था. एंड देन ही डिड स्टेप स्टेप अप टू डायरेक्ट द फिल्म एज वेल. इसमें जो चाइल्ड एक्टर्स हैं वो ही लीडिंग रोल्स लीडिंग एक्टर्स थे इस फिल्म के, बिकॉज़ ये जो फिल्म है ये दो बच्चों पर ही रिवॉल्व करती है. एंड देन ये जो डेविड एक्टर हैं ये फिर उनको आई गेस गाइड करते हैं. एंड देन ही सुपरवाइजेज और अपनी जो है रहनुमाई करते हैं ताकि ये बच्चे जो हैं गलत राह पर ना चल पड़े. सो दिस फिल्म डेफिनेटली अ नॉमिनी वेरी इंस्पिरेशनल फिल्म. और ऐसे जब सॉन्ग्स मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आशा जी ने गाए तो ये फिर जो हैं नेशन वाइड पॉपुलर एंड एवरग्रीन सॉन्ग्स बन गए.
1: नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी.
0: बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा सवाल पूछा, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है. एंड देन जो उनकी क्रिएटिविटी है कि मुट्ठी इतनी स्ट्रांग है, इसमें लकीरें होती हैं, इसमें किस्मत होती है, इसमें हार्डवर्क लिखा होता है और फिर जो अच्छे कर्म होते हैं वो सब लिखा होता है. सो मुट्ठी जो है, ये जो कॉन्टेक्स्ट सुनाया है, दिखाया है, बताया है कि मुट्ठी बहुत एक पावरफुल चीज़ है, जो इन हाथों से तुम करोगे वो अच्छा होगा, अगर बुरा काम करोगे तो बुरे काम का फिर अंजाम भी बुरा ही होता है. सो पावर एंड स्ट्रेंथ टू अ फिस्ट एंड टू अ हैंड. और जो है बच्चों के को अच्छी रहनुमाई मिल जाए तो फिर बच्चे सही राह पर चलते हैं और फिर नेशन जो है, कंट्री एज अ कम्युनिटी एज अ नेशन पूरा जो है सक्सेसफुल होता है. थैंक यू हमारी लिसनर स्पेशली कि आपने इतना अच्छा सॉन्ग रिक्वेस्ट किया. एंड आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं है, वी ऑल बिलीव इन द फैक्ट दैट दीज सॉन्ग्स हैव सच अ डीप मीनिंग एंड दे मोटिवेट अस, दे इंस्पायर अस एंड समटाइम्स दे इवन हैव अस रियलाइज व्हाट द रियलिटी इज़, वेयर वी आर गोइंग एंड व्हाट वी नीड टू डू टू बिकम अ बेटर पर्सन एवरी डे. अब जो है ना घड़ी में टाइम अबाउट 8:29:30 हैं. सो अब मुझे समझ नहीं आ रही, ऑब्वियसली दूसरा सॉन्ग तो नहीं लगाऊंगी एंड एडवर्टाइजमेंट भी अभी नहीं पढ़ूंगी किसी हमारे स्पॉन्सर की, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू मच, क्योंकि पूरा टाइम देना होता है हर एक एडवर्टाइजमेंट को. सो एनी वे आई एम जस्ट गोइंग टू रीइटरेट द फोन नंबर हियर विच इज़ 9722355555 एंड 104.9 FM फाइनेंशिया रेडियो. This is RJ Krupp. I will be right back after this short commercial break.
2: Dosto, moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
6: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Oora Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव अ 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-88-9914।
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
3: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ। विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
11: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
12: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
13: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

राज कपूर साहब की टिट्स बिट्स में हम लोग बात कर रहे हैं टिट बिट्स में, एंड इसमें जो है अभी मैं उनकी बात फिर से थोड़ी सी छेड़ूंगी, बिकॉज जो है एक सॉन्ग आया हुआ है जिसकी रिक्वेस्ट है, एंड शंकर जयकिशन साहब के साथ जो ये जो जोड़ी थी म्यूज़िक कंपोज़र की, एंड इन्होंने राज कपूर साहब के साथ बहुत सारे जो हैं अच्छे काम किए थे, एज इन बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया था, बहुत लोगों को एंटरटेन किया था, एंड इतने यादगार सॉन्ग्स कंपोज किए। बरसात फिल्म से इनका जो है सफ़र इकट्ठे शुरू हुआ, शंकर जयकिशन एंड राज कपूर साहब का, वहाँ से लेकर जो है टोटल आई थिंक 18-19 फिल्मों में इन्होंने काम किया। 1970 में एक इतनी अच्छी फिल्म आई थी जिसको जब रिलीज़ किया था तो काफ़ी फ्लॉप फिल्म थी, एंड काफ़ी लंबी फिल्म थी, दो इंटरवल्स थे, लेकिन बाद में जब इसको री रिलीज़ किया तो ये फिल्म ने तो बस बहुत कमाल ही कर दिया। उसी फिल्म का ये वाला सॉन्ग है जो हमारे लिसनर सुनना चाहते हैं, मेरा नाम जोकर, दैट केम आउट इन 1970, शंकर जयकिशन।

मेरा नाम जोकर मुकेश साहब, शंकर जय किशन एंड राज कपूर साहब, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री, जिन्होंने इतनी सारी अच्छी फिल्मों में काम किया, इतनी सारी अच्छी फिल्में बनाई और इतना जो है इतनी लेगेसी छोड़ कर गए, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री, शोमैन ऑफ द मिलेनियम। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको मिला था 1987 में, पद्म भूषण मिला था 1971 में, और ये दोनों अवार्ड्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती हैं, सो दे आर हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द मिलेनियम एंड ऑल्सो लाइक आई सेड शोमैन ऑफ द मिलेनियम। शोमैन इसलिए क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन, यही चीज मेरा नाम जोकर में भी दिखाई थी।

0: है, जाने कहां गए वो दिन।
1: राज कपूर साहब खुद कहते हैं कि मेरा नाम जोकर उनकी अपनी पर्सनल सबसे फेवरेट फिल्म रही है। आवारा दैट केम आउट इन 1951 वाज वन ऑफ द फिल्म्स दैट ही रियली एंजॉयड। जागते रहो जिसका मैसेज बहुत अच्छा था, एक्चुअली जागते रहो आंखें खोल देने वाली फिल्म थी। श्री 420 विच ऑल्सो शोड सम बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ, एंड देन बॉबी जिसमें उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था, एंड देन है ना विच वॉज एक्चुअली हिज लास्ट फिल्म, और उसको वो अनफॉर्चुनेटली कम्प्लीट नहीं कर पाए थे, उनके बेटे ने देन आगे चलकर उसको कम्प्लीट की, बट दैट ऑल्सो बिकेम अ वेरी वेल नोन फिल्म फॉर द मूवी इंडस्ट्री। सो ये राज कपूर साहब की जो देन ना सिर्फ फिल्मों के थ्रू बल्कि ऑल्सो जो आगे इनकी फैमिली चल रही है, इवन अब करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर जो इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, सो इनके जो हैं फैमिली मेम्बर्स भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनके ग्रैंड किड्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स उनकी मेमोरीज राज कपूर साहब की इतनी जो बिल्कुल अलाइव रखी हुई हैं इन सब के काम के थ्रू। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ राज कपूर साहब, एंड डेफिनेटली सच एक्टर्स, सच पर्सनैलिटीज एंड सच पीपल आर बॉर्न ओनली वंस, बट द वर्क दैट दे लीव बिहाइंड, द लेगेसी दैट दे लीव बिहाइंड इज डेफिनेटली इटर्नल एंड टाइमलेस। अब हम मुकेश साहब की आवाज़ से बढ़ते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। महमूद एंड हेलन जी पर फिल्माया गया ये सॉन्ग।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

जग धारी जाने को

1965, ये वही एरा है, ये वही साल है और ये वही दशक है 60s का, जब इतनी गोल्डन फिल्में और गोल्डन म्यूजिक एंड गोल्डन सिंगर्स, गोल्डन एक्टर्स थे. तो ये काफ़ी सक्सेसफुल एरा का ये गीत फिल्म दैट केम आउट इन 65 कॉल्ड गुमनाम, थ्रिलर फिल्म थी एंड सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे. इस फिल्म के सॉन्ग्स जो हैं उसको अगेन शंकर जयकिशन की कॉम्पोजिशन थी. एंड हमारे लिसनर जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की, सॉरी यू हैड टू वेट फॉर अदर वाइल बिकॉज इतने सारे सॉन्ग्स आपके सॉन्ग की रिक्वेस्ट से पहले जो मैंने सुनाए, बट बेटर लेट देन नेवर. 9 बजे से पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ये सॉन्ग प्ले करूँगी एंड यस, आई वॉज एबल टू प्ले दिस सॉन्ग मच बिफोर 9 o'clock. प्लीज़ कीप द कॉल्स कमिंग इन. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. द नेक्स्ट सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म बाजार, तलत अजीज एंड लता जी की आवाजें.

अगर आपके अभी कुछ आपके घर में या आपके फैमिली मेम्बर्स का कोई इवेंट आने वाला है या कोई बहुत बड़ी आपको कोई पार्टी थ्रो अवे करनी है एंड जो है आप प्लान कर रहे हैं कोई वेडिंग हो या बहुत कोई स्पेशल ओकेजन हो आपकी लाइफ का या जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन हाउस वार्मिंग या और भी कोई स्पेशल माइलस्टोन हो आपकी लाइफ का एंड यू हैव टू गिव अ पार्टी टू योर फ्रेंड्स टू योर फैमिली तो आप स्ट्रेस मत कीजिए. देर इज़ अ वंडरफुल वेन्यू इन टाउन दैट टेक्स केयर ऑफ द डेकोरेशन केटरिंग एंड ऑल द लिटल डिटेल्स और उस केटरिंग उस इवेंट सेंटर का नाम है वनेसा इवेंट्स. प्लानिंग आपके लिए बहुत सिंपल कर देंगे एंड दे विल ब्रिंग एवरीथिंग टू योर वन प्लेस एंड दे ब्रिंग द वेन्यू दे आर दे टेक केयर ऑफ द डेकोरेशन दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द केटरिंग द फूड एट्सेट्रा. बसेरा ग्रैंड जो है वहाँ से बहुत पॉपुलर केटरिंग कंपनी है सो दे विल बी प्रोवाइडिंग फूड एंड सिग्नेचर इवेंट्स जो हैं फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइक आई मेंशन द केटरिंग विच इज़ डन बाय बसेरा ग्रैंड. आप फोकस कीजिए अपनी मेमोरीज बनाने के लिए और बाकी जो है वनेसा इवेंट्स पर छोड़ दीजिए. दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग श्योर दैट योर event goes very well without any stress to you. In contact, in connection with getting in touch with Vanessa Events, you can contact Hari Basera and his phone number is 469-442-8770. और ये हैं वनेसा इवेंट्स नाम जो है इनके बैंक्वेट हॉल का इनकी कंपनी का. सो ऑल ऑफ द डिटेल्स यू कैन गेट फ्रॉम हरी बसेरा. हिज फोन नंबर इज 4697 8770. Vanessa Events. They will plan a wedding, graduation, housewarming, or any special celebration or a milestone with you. So definitely get in touch with Hari Basera on his phone number, which is 469-442-8770. Ye wala song Sangeeta ji ne request kiya.

टाइम होने वाला है ब्रेक का, और बस एक ये अपनी तरफ से एक छोटा सा सॉन्ग है जो मैं प्ले करने वाली हूँ. पूरा तो हम नहीं सुन पाएंगे बिकॉज ब्रेक कम्स मच बिफोर द सॉन्ग रियली एंड्स. ब्रेक के बाद एक गिव अवे है मेरे पास चंडीगढ़ बाइट्स का, सो स्टे ट्यून्ड इन. क्वेश्चन पूछूंगी ब्रेक के बाद. ब्रेक से आने के बाद शो चलेगा 10 o'clock तक, एंड देन मच मोर नाइसर सॉन्ग्स इन योर रिक्वेस्ट. सो कीप द कॉल्स कमिंग इन 972-235-5555.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है, अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए। और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
4: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
5: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो।
9: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
12: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
13: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
14: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन अर्विंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
12: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: Aaj hi sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
19: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
18: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
18: सच में? सब संभालेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी,

0: सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 वेनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर

टाइम ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द फिल्म कॉल्ड डर्टी डांसिंग, जो कि इतनी पॉपुलर फिल्म थी. एंड दिस सॉन्ग डेफिनेटली इज अ टाइमलेस सॉन्ग दैट वी लाइक टू प्ले एंड हियर एंड हियर ऑल द टाइम. वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो. मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे एकरूप. आपका स्वागत करती हूँ. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. और ये नंबर बस याद रखें अभी तो वेरी स्पेशली, बिकॉज अभी मैं आपको चंडीगढ़ बाइट्स के बारे में बताने वाली हूँ और इनका जो गिव अवे है उसके बारे में भी. हम लीव द फोन लाइंस ओपन एंड देन यू कैन कॉल इन टू claim your prize if you give me the right answer. Here is your chance to win $10 off on a billing of $50 only dine in. जी हाँ, dine in के लिए आप ये $10 off use कर सकते हैं. अगर आपका $50 का बिल है तो चंडीगढ़ बाइट्स में आपको $10 ऑफ मिल सकता है. एंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे थ्रू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. दे आर लोकेटेड ऑफ ऑफ मैकडर्मट इन एलन. विजिट chandigarhbites.com फॉर डिटेल्स. आप जो है, अगर आपने ये गिव अवे पहले नहीं जीता इन द लास्ट वन मंथ फनीशा एयरवेव्स पर, तो फिर आप ज़रूर कॉल करें. आप वन मंथ में आप एक ही बार विन कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट टू गिव एवरीबडी अ फेयर एंड इक्वल चांस. अगर आप लास्ट एक मंथ में जीत चुके हैं तो फिर आप रिफ्रेन करें राइट अवे कॉल करने के लिए. अगर आपको, इफ़ यू डू वांट टू कम ऑन एयर एंड टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन दैट आई एम गोना आस्क, यू आर वेलकम टू डू सो, बट आफ्टर वी हैव अनाउंस द विनर. दैट वे द पीपल दैट हैवन्ट कॉल्ड इन और दैट हैवन्ट वन अ गिव अवे इन द लास्ट वन मंथ, वी गिव देम अ चांस. अच्छा, अब ये रेस्टोरेंट का नाम है चंडीगढ़ बाइट्स. तो मैं यूजली क्या करती हूँ जब गिव अवे देना होता है, तो अबाउट 15-20 मिनट्स बिफोर द ब्रेक 9 o'clock, तो मैं सोचना शुरू कर देती हूँ कि आज मैं कौन सा सवाल पूछूँगी. सो आज मैं सोच रही थी, तो आई वॉज काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड एंड अनडिसाइडेड एंड अनश्योर कि आज मैं कौन सा सवाल पूछूं. सो देन आई थॉट कि क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम चंडीगढ़ बाइट्स है, तो हाउ अबाउट I ask the listeners, excuse me, I ask you all to name the few Bollywood actors that have become such a known name in the industry and they are from Chandigarh. Agar to unka birth Chandigarh ka hua hai, to aap mujhe unka naam bataiye. The more names you give me, of course, agar aapke paas zyada naam honge, to phir aap winner ho jayenge. So this is how we're going to do it today. You have to tell me the name of those actors, male or female, that have been that were born in Chandigarh. So how about that? Aaj isi ko hi hum apne is giveaway ka sawal banate hain. 972-235-5555 is the number to the studio. So you have to tell me the names of those actors, male and female, jo ki Chandigarh mein born hue hain. Chandigarh se unka rishta nata raha hai. So you have to tell me the more number of actors, names you tell me, the winner, more chances of you being the winner for today's giveaway, which is $10 off on a billing of $50 dine-in only. While you think about the answer, the phone lines are open, 972-235-5555. You have to give me the names of the actors that are born and belong to Chandigarh. To tab tak hum ye wala song sunte hain, and I think ye film jo hai Chandigarh mein hi shot hui thi. Bahut achhi film, award-winning song, Sher Shah.

0: Good morning. You're live on air. Are you calling in for the giveaway?
1: Yes.
0: आप अपना नाम
1: गुड
0: बताइए.
1: मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग. आप
1: हाय.
0: हेलो. नाम बताइए आप. जी.
1: दिस इज अमरप्रीत.
0: ओके. आपके नाम से तो लग रहा है आप शायद चंडीगढ़ की ही होंगी.
1: नहीं, मैं चंडीगढ़ की नहीं हूँ, बट
0: अच्छा
1: आई नो लाइक फ्यू ऑफ द फोक्स फ्रॉम
0: अच्छा एंड व्हेन यू से
1: चंडीगढ़.
0: फ्यू ऑफ द फोक्स आर दे योर फ्रेंड्स ये मूवी एक्टर्स.
1: माय फ्रेंड्स एंड लाइक मूवी एक्टर्स आल्सो.
0: अच्छा, ठीक है. मैंने सोचा शायद ये फ्यू फ्यू फोक्स आपके सारे जो एक्टर्स के आप नाम लेने लगे हो दे आर योर फ्रेंड्स.
1: आई विश दे
0: आई
1: कुड
0: नो
1: बी लाइक माय
0: आई नो. ठीक है,
1: फ्रेंड्स.
0: चलिए बताइए. सो
1: आयुष, या द फर्स्ट वन इज आयुष्मान खुराना.
0: वाज ही बोर्न इन
1: नेक्स्ट इज
0: वाज ही
1: या
0: बोर्न
1: ही
0: इन
1: बॉर्न इन यस ही बॉर्न इन चंडीगढ़.
0: ओके.
1: एंड हिज ब्रदर आप अधीक्षित खुराना.
0: क्या नाम है उनके ब्रदर का?
1: अपरीक्षित खुराना, सॉरी अपार शक्ति खुराना, माय
0: अपार
1: मिस्टेक,
0: शक्ति. हाँ, अगर आप ये नाम
1: अपार
0: ठीक नहीं
1: शक्ति
0: लेते तो
1: खुराना.
0: मैं ये काउंट नहीं करती. हाँ
1: हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड. यस,
0: जी
1: अपार शक्ति खुराना.
0: जी
1: एंड देन गुलपनाग.
0: वो शी बोर्न इन चंडीगढ़ एज वेल.
1: यस,
0: गुलपनाग. अच्छा, और ठीक
1: शी
0: है.
1: इज एक्ट्रेस, या लाइक पंजाबी एक्ट्रेस, मोस्टली शी परफॉर्म इन पंजाबी मूवीज. एंड नेक्स्ट इज जिमी शेरगिल,
0: वॉज ही
1: ऑल द
0: बोर्न
1: बिग
0: इन
1: नेम्स.
0: वॉज ही बोर्न इन
1: यस
0: चंडीगढ़ आर यू श्योर?
1: यस, आई मीन यू कैन क्रॉस चेक, बट दिस इज व्हाट आई थिंक.
0: लेट मी चेक, बिकॉज जब मैंने जिमी शेरगिल का चेक किया ना तो आई थिंक उनका बर्थ कहीं और का है. बट एंड जी ओके. आपने मुझे कितने, सो अपार शक्ति, आयुष्मान
1: मैंने
0: खुराना, गुलपनाग. सो फॉर यू सो फार इट्स
1: गुलपनाग,
0: 3. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना राइट योर नेम. अमन अमरप्रीत, राइट यू सेड?
1: अमरप्रीत, या आई
0: ठीक है.
1: कैन टेल यू वन मोर ऑल्सो
0: हाँ जी
1: इफ यू
0: बताएं.
1: लाइक, या मे बी माही विज इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
0: माही विज, वो जो डीडी पर आती थी.
1: नहीं, माही विज भी एक दो पंजाबी मूवीज में आई हुई है, एंड
0: अच्छा
1: उन्होंने मेरे ख्याल से किसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो टेलीविजन में भी काम किया होगा,
0: हाँ, आई थिंक
1: नॉट
0: मैंने
1: श्योर.
0: उनका नाम सुना हुआ है. सो आई एम व्हाइल यू आर
1: हाँ
0: टॉकिंग आई एम जस्ट गोना डबल चेक. माही विज का मुझे नहीं पता, बट आई
1: ओके.
0: थिंक जिमी शेरगिल तो डेफिनेटली चंडीगढ़ के बॉर्न नहीं है जहाँ तक मेरी रिसर्च है. आपने माही
1: नो
0: विज,
1: प्रॉब्लम.
0: लेट मी जस्ट डबल चेक, माही विज इज शी बॉर्न इन
1: ओके
0: चंडीगढ़? दैट आई डोंट नो. आपको
1: ओके,
0: लगता है कि वो चंडीगढ़ की बॉर्न है?
1: आई थिंक शी इज बॉर्न इन चंडीगढ़, एंड देर इज अनदर गर्ल वामिका गब्बी,
0: यस
1: वो
0: ठीक.
1: भी चंडीगढ़ से ही
0: हाँ
1: बिलोंग
0: जी
1: करते
0: हाँ
1: हैं,
0: जी हाँ जी ठीक है. सो आपने
1: है ना.
0: मुझे कितने नाम बताए?
1: देखो, मैंने आपको बताया आयुष्मान खुराना, उनके ब्रदर अपार शक्ति खुराना,
0: हाँ जी
1: देन गुलपनाग,
0: हाँ
1: जिमी शेरगिल, वामिका गब्बी,
0: एंड
1: ठीक है. और अगर हो सके तो आई एम नॉट श्योर, एक और थे, वो प्रियंका चोपड़ा
0: अब
1: के साथ एक
0: आप
1: मूवी
0: तो
1: में
0: धीरे
1: आए थे.
0: धीरे. अच्छा, कौन से एक्टर बताए?
1: आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हरमन बावेजा होंगे. वो मुझे श्योर नहीं है, बट आई एम जस्ट
0: अच्छा
1: गेसिंग.
0: ठीक है, मैंने लिख लिया है. एंड आई एम ऑल्सो गोना टेक अनदर कॉलर. लेट्स हियर फ्रॉम देम, अदरवाइज आई एम गोना
1: श्योर,
0: अनाउंस हु द विनर इज एंड देन आप जस्ट स्टे क्लोज टू द
1: एब्सोल्युटली,
0: फोन.
1: थैंक
0: ठीक है, ओके,
1: यू सो
0: ऑल राइट.
1: मच.
0: थैंक यू
1: या
0: अमरप्रीत, गुड टॉकिंग टू यू.
1: हैप्पी
0: ओ
1: संडे,
0: या,
1: या
0: यू टू.
1: बाय,
0: थैंक यू थैंक यू.
1: या बाय.
0: सो अभी जो है कॉल्स आ रही थी बट आई थिंक उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया कॉलर्स ने. बट हियर यू गो. गुड मॉर्निंग, योर लाइव ऑन एयर.
2: So, celebrities who are born in Chandigarh,
0: यस
2: आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति, सरगुन मेहता, वामिका गब्बी,
0: सरगुन
2: कपिल
0: मेहता,
2: देव,
0: आर यू श्योर सरगुन मेहता इज फ्रॉम चंडीगढ़? इज शी बोर्न इन चंडीगढ़?
2: यू कैन लुक एट मैं गूगल सर्च किया है मैंने, ऑनेस्टली. तो नहीं, सीरियसली मैं सच में बता रही हूँ, सरगुन
0: हाँ,
2: मेहता है, बिकॉज इवन आई वॉज इनश्योर.
0: सो यू
2: वामिका गब्बी तो मुझे पता है,
0: पता है उनका तो मुझे
2: और
0: भी पता.
2: हरमन हरमन बबेजा, कपिल देव इज फॉर श्योर बिकॉज ही केम टू आवर स्कूल.
0: ओ
2: तो
0: बट कपिल देव ने कौन सी मूवी में काम किया? डिड आई से एक्ट?
2: नहीं, मूवी में नहीं किया, बट
0: मुझे
2: मूवीज में आते
0: लगा.
2: हैं, वो कैमियो कैमियो तो करते हैं कभी कभी मूवीज
0: ये वाला जो आपका आंसर है ना, ये हम बोनस के लिए रखेंगे. अगर तो टाई हुआ ना तो फिर इस क्वेश्चन, इस ऑप्शन के ऊपर मैं आपको विनर दूंगी. बट हाउ
2: में.
0: मेनी
2: जरूर जरूर
0: हाँ,
2: जरूर.
0: बट हाउ मेनी एंड व्हाट इज योर नेम? यू डिडंट इवन टेल अस योर नेम.
2: सॉरी सॉरी, माय नेम इज श्वेता.
0: श्वेता, ठीक. और आपका भी
2: नहीं
0: बर्थ चंडीगढ़ का ही है?
2: नहीं मैं चंडीगढ़ में, मैं आई वाज बोर्न इन कलकत्ता, बट मैं रही हरियाणा में, बड़ी हरियाणा में रही हूँ, और
0: हाँ
2: चंडीगढ़ इज लाइक वेरी क्लोज टू माय कॉलेज,
0: वेरी
2: तो
0: क्लोज.
2: आई
0: हाँ,
2: हैव अ रियली सॉफ्ट कॉर्नर फॉर चंडीगढ़. इट्स
0: अरे
2: लाइक वन
0: वाह,
2: ऑफ द बेस्ट बेस्ट प्लेसेस एंड द लेक एंड इट्स ऑसम. अगर वो नहीं काउंट होता मैम तो आप जसपाल भट्टी ले सकते हैं, वो तो 100% एक्टर है.
0: जी जी जी. सो यू डिडंट टेल मी हाउ मेनी डिड यू से सो फार.
2: अच्छा अच्छा लेट्स स्टार्ट. अपार शक्ति, आयुष्मान, वामिका जब्बी, जसपाल भट्टी ले लेते हैं. वॉट अबाउट प्रिंस, प्रिंस नरूला, आई थिंक वो भी एक्टिंग थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं.
0: आपने इससे पहले जो एक दो जो पहले नाम बताए थे, सरगुन का, ठीक है चलो मैं थोड़ा साइड में उनका नाम रखती हूँ, मुझे पक्का नहीं पता सर.
2: हरमन बवेजा इज आल्सो देयर, वो तो है. वामिका गप्पी इज
0: आल्सो, सो यू टोल्ड मी
2: कपिल देव को अगर
0: नहीं कपिल. But I like your research. आपने काफी अच्छी रिसर्च की. एंड योर नेम इज श्वेता, यू सेड.
2: हां जी श्वेता दत्त.
0: सो आपने मुझे 6 नेम्स बताए हैं, ठीक है.
2: हां जी
0: ठीक है. लेट मी मूव ऑन टू द, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन एयर. जी थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग, योर लाइव ऑन एयर. आप पहले तो अपना नाम बताइए. आर यू कॉलिंग इन फॉर द गिव अवे?
3: यस.
0: ओके सो लेट्स स्टार्ट विद योर नेम फर्स्ट.
3: माय नेम इज शिव. And the Bollywood actors born in Chandigarh is Ayushman Khurrana, Upper Shakti Khurrana, Kiran Khair, Sarvin Chawla, Mahi Gill, Gul Panag, Harman Baweja, Sargun Mehta.
0: Achha. So you said a few names, but usme se let me just correct you ki ye jo Kiran Kheran hai, she is not born in Chandigarh. She is from Chandigarh. I think inka birth Bangalore ka hai. So aapne mujhe 1, 2, 3, 4, 5 names bataye, right? And the sixth one is Kiran Khair. So
3: Harman Baweja.
0: Yes, that's including the 5. So I'm just making a tally mark. What is your name? Hanji? Mahi Gill. Mahi Gill ya Mahi something else? Mujhe किसी ने पहले भी माही गिल उनका मैं चेक करती हूँ, बिकॉज़ उनका मुझे पता नहीं है. माही गिल, इज शी द एक्ट्रेस माही गिल? ऑब्वियसली हाँ ठीक है. सो उनका भी बर्थ चंडीगढ़ का है. ओके आई गेट इट. ठीक है. सो आपने भी मुझे 6 नेम्स बताए, ठीक है. थैंक यू सो मच. आप अपना नाम बता दीजिए. 7th कौन है?
3: मैंने किरण के बताया था, पर आपने बोला
0: हाँ जी वो या सो आपके 6 हो गए. एंड यू, आई डिडंट गेट योर नेम, कैन यू से टेल मी योर नेम अगेन?
3: शिव.
0: ओके ठीक है. ऑलराइट थैंक यू शिव, आई अप्रिशिएट इट. जस्ट स्टे क्लोज टू द फोन और टू द रेडियो एंड आई एम गोना अनाउंस. ओके थैंक यू वेरी मच. I really appreciate आप लोग इतनी सोच समझ कर बता रहे हैं. Yes, किरण खेर, I don't think she is born in चंडीगढ़. उनकी schooling, हाँ उनकी familial ties ज़रूर हैं, वो रही भी हैं चंडीगढ़ में. And so मुझे 3 कॉलर्स के कॉल्स आए हैं अभी तक एंड काफ़ी सारे नेम्स बताए हमारे कॉलर्स ने. मोस्टली हमारे पास 4 या 6 अबाउट 5 to 6 जो हैं नेम्स आपने मुझे बताए हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू लुक एट माय टैली मार्क्स वंस अगेन एंड व्हाइल यू लिसन टू दिस सॉन्ग. इफ यू हैवन कॉल्ड इन येट एंड इफ यू वांट टू गिव मी मोर नेम्स ऑफ द पीपल दैट आर बोर्न इन चंडीगढ़ एंड आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग टाइज टू दिस सिटी, तो आप मुझे ज़रूर कॉल करके बताइए, बिकॉज आपको मिलेगा चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से गिव अवे. आई विश आई कुड गिव यू अ टिकट बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रॉम चंडीगढ़, लेकिन वो अब हम नहीं कर सकते हैं. लेकिन चंडीगढ़ बाइट्स का आपको जो है खाना ज़रूर आपको $10 ऑफ आपको वो हम दिलवा सकते हैं. सो 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. दिस मूवी इज शॉट इन चंडीगढ़. So we're going to resume the song. If you haven't called in yet, do give me a call. I am going to announce the winner soon. I haven't done that yet. Aapke paas abhi bhi hain kuch minutes, aap call kar lijiye. The actors that are born in Chandigarh.

0: गुड मॉर्निंग, योर लाइफ ऑन एयर.
1: हेलो।
0: हेलो, आप ऑन एयर हैं. आपने गिव अवे का जवाब देना है या आपने कोई कॉल सॉन्ग रिक्वेस्ट के लिए कॉल किया?
1: मैम, दिस इज विथ रिगार्ड्स टू द गिव अवे
0: ओ, सो यू वांट टू गिव द
1: एंड
0: राइट, यू वांट टू टेल मी द आंसर फॉर द गिव अवे? ओके,
1: यस प्लीज। या
0: या गो अहेड.
1: सो नेम्स आर लाइक से नो मेनी पीपल कवर दिस। आयुष्मान खुराना,
0: जी,
1: अपार शक्ति खुराना,
0: यस.
1: हरमान बवेजा, विवेक शॉक, आई थिंक दिस नेम इज नॉट काउंटेड बिफोर,
0: यस, उनका नाम नहीं आया.
1: प्रिंस नरूला।
0: प्रिंस नरूला. ओके,
1: हेलो,
0: हाँ जी, हाँ जी, यस, आई एम हियर, बट आई एम
1: प्रिंस
0: गोना.
1: नरूला,
0: सो
1: माही गिल।
0: व्हाट
1: या
0: मूवी
1: सॉरी,
0: डिड प्रिंस नरूला वर्क इन? डू यू
1: He's actually he worked in a movie, but he's actually it's a kind of a side actor, but he's not a main actor. I would say it's not a lead actor kind of thing.
0: ओके,
1: But I can say Vivek Shok,
0: यस
1: he's also is an actor who was born in Chandigarh,
0: यस
1: and he's a comedian. He has done multiple
0: यस
1: movies.
0: वो जसपाल भट्टी के साथ काम करते थे काफी, है ना
1: हाँ,
0: उन्होंने. हाँ
1: exactly.
0: जी
1: And
0: जी
1: Mahi Gill है, and you know Mahi Gill was named already. Gulpanag,
0: हाँ जी, गुलपना.
1: Harman Baweja,
0: हाँ,
1: सुरवीन चावला।
0: या सुरवीन. यस, आई डोंट थिंक, अगर पहले हमारे किसी ने शायद नाम लिया सुरवीन का, आई डोंट नो. शी इज
1: या
0: बॉर्न
1: एंड
0: इन,
1: एंड आई नो यामी गौतम, बट शी इज बोर्न इन हिमाचल, बट शी वाज रेज्ड इन इन चंडीगढ़।
0: आई थिंक वो पढ़ने गई थी, हाँ, वहाँ पर उनके फॉर्मेटिव
1: या
0: ईयर्स थे
1: करेक्ट,
0: बाद
1: यस
0: में. हाँ, सो
1: यस
0: यामी
1: यस
0: गौतम इज नॉट काउंटेड. सो आपने मुझे
1: करेक्ट करेक्ट
0: आयुष्मान,
1: या
0: अपार शक्ति, देन यू, हु एल्स डिड यू से? विवेक शॉक.
1: माही गिल, गुलपना, हरमान चावला, विवेक शॉक, प्रिंस नरूला,
0: हाँ,
1: हरमान बवेजा।
0: एंड द लास्ट वन वॉज सुरवीन चावला, राइट? सो आपने मुझे
1: या सब इट
0: 8 नेम्स बता दिए. सो आई थिंक सो फार आपके सबसे ज्यादा हैं, बाकियों ने मुझे सिक्स
1: एंड
0: बताए.
1: सरगुन मेहता आल्सो इज अनदर पर्सन मैम।
0: आप वैसे ही विनर हो गए. यू ऑलरेडी टोल्ड मी एट
1: माय
0: नेम्स. आपने एक बार अपना नाम, कैन यू से अस टेल अस योर नेम अगेन?
1: नेम इज रवि कुमार।
0: रवि कुमार. ओके, ऑल राइट, रवि कुमार, सो यू आर द विनर. आपने मुझे 8 नाम बताए हैं ऑफ द पीपल दैट आर बॉर्न इन, और ऑफ द सेलिब्रिटीज दैट आर बॉर्न इन चंडीगढ़. सो यू आर द विनर. आपको पता है आपने क्या जीता है?
1: आई डोंट नो मैम, आई डोंट नो। आई थिंक
0: ओके,
1: आई हर्ड चंडीगढ़ बाइट्स, आई थिंक यू सेड
0: यस,
1: प्राइस फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स। या
0: सो इट्स $10 ऑफ ऑन योर टोटल बिल ऑफ $50. अगर आप वहाँ पर डाइन इन ओनली करते हैं तो आपको, एंड आपका बिल $50 आता है, तो आपको $10 का डिस्काउंट. सो
1: गॉट इट,
0: दैट्स
1: थैंक यू।
0: दैट्स योर गिव अवे. बट स्टे हियर, आई एम गोना गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड टेक योर इन्फॉर्मेशन सो वी कैन गिव इट टू द रेस्टोरेंट. ओके, सो डोंट हैंग अप. यू आर द विनर, रवि कुमार. आपने मुझे 8 नाम बताए हैं एक्टर्स के जो कि चंडीगढ़ में बॉर्न हुए हैं. सो जस्ट स्टे हियर, आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग एंड देन आई विल टॉक टू यू. ओके,
1: Noted. Thank you
0: या
1: much.
0: श्योर. सो ये वाला सॉन्ग है चंडीगढ़ में, फिल्म का नाम गुड न्यूज.

0: सो रवि कुमार इज द विनर. उन्होंने 8 नाम बताए मुझे, 9-8 पर्सनैलिटीज, नोन पीपल दैट आर बॉर्न इन चंडीगढ़. ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर्स दैट हैव टाइज टू चंडीगढ़, उनकी स्कूलिंग, उनकी ब्रिंगिंग अप, कहीं ना कहीं वो लोग कनेक्टेड हैं चंडीगढ़ से. बट दीज 8 पीपल आर बॉर्न इन चंडीगढ़ एंड आई विल जस्ट लेट यू नो देयर नेम्स आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओह हाँ, ये तो अलग है.
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
12: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
13: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
2: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन.
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं.
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
15: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगा एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं हीरो.
17: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

थैंक यू सो मच. आप सबका इतना अच्छा रिस्पांस जब मैंने गिव अवे पूछा चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना चंडीगढ़ रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लूँ हमारे लिसनर्स को. एंड वंडरफुल रिस्पांस हमारे लिसनर्स जिन्होंने इतने सारे आंसर्स दिए कि मैंने पूछा था कौन से एक्टर्स जो हैं चंडीगढ़ को बिलोंग करते हैं वेरी स्पेसिफिकली दैट दे हैव बिन बॉर्न देयर. येस देर आर सो मेनी एक्टर्स इन द इंडस्ट्री, सो मेनी पर्सनैलिटीज़ एंड ऑफ कोर्स वेरी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन कपिल देव एंड सो मेनी मोर दैट आर फ्रॉम चंडीगढ़. तो हमारे लिसनर्स ने सबके इतने वैरायटी वाले नेम्स बताए एंड येस यू ऑल नो क्वाइट अ लॉट. एंड जो है हमारे विनर जो रहे रवि कुमार, उन्होंने एक्चुअली 8 नाम मुझे बताए थे एंड देन आई शुड हैव काइंड ऑफ रिमेंबर टू करेक्ट और से और टू रिपीट के जो है मैं एक्टर्स के नाम पूछ रही थी. हरमन बवेजा का नाम मुझे लिसनर्स ने बताया. लेटर ऑन ड्यूरिंग द ब्रेक आई थॉट कि वो एक्टर, आई डोंट थिंक उन्होंने किसी मूवी में काम किया, मुझे तो पता नहीं. आई थॉट ही वॉज जस्ट एन अ डायरेक्टर, बट मे बी शायद उन्होंने किया भी होगा. ही डिड गो टू एन एक्टिंग स्कूल एंड आई थिंक उन्होंने एक्चुअली नो किया है लव स्टोरी 2050 जो उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ की है. सो येस, सो आई टेक बैक माई वर्ड. सो हरमन बवेजा, येस ही वॉज बॉर्न इन चंडीगढ़ एंड देन आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना उनके ब्रदर, सुरवीन चावला जो कि पॉपुलर मॉडल एंड एक्टर रही हैं, विवेक शॉक जिनको जसपाल भट्टी के साथ काफ़ी हम देखते थे कॉमेडी रोल्स, कॉमेडी मूवीज़ एंड कैरेक्टर उनका काफ़ी कॉमिक होता था, प्रिंस नरूला ऑल्सो एन एक्टर, माही गिल अनदर एक्टर एंड गुल पनाग जिन्होंने अपना फेम उनको स्टारडम जो है मिस इंडिया के ब्यूटी पैजेंट से मिली थी. शी वन दैट ब्यूटी पैजेंट एंड देन शी वेंट ऑन टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द मिस यूनिवर्स ब्यूटी पैजेंट. आगे चलकर उन्होंने कुछ अच्छी फिल्मों में काम किया. डोर वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी पॉपुलर वेरी अमेजिंग फिल्म्स दैट शी वर्कड इन विद आयशा ताकिया. एंड देन फिर एक जुर्म फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने बॉबी देओल के साथ एंड लारा दत्ता मिस यूनिवर्स जो खुद भी रह चुकी थी उनके साथ काम किया था. सो वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं जो चंडीगढ़ में बॉर्न हुई हैं. सो डेफिनेटली चंडीगढ़ इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, हैज़ प्रोड्यूस्ड सच फेमस पीपल पर्सनैलिटीज़ दैट हैव मेड अ नेम फॉर देमसेल्व एंड डेफिनेटली फॉर द कंट्री. थैंक यू फॉर दिस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रवि कुमार. आप विनर रहे हैं एंड आपका नाम जो है हम चंडीगढ़ बाइट्स को दे देंगे. आप वहाँ जाकर अपना जो है प्राइज क्लेम कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. अगर आपके पास कोई आपने ऐसे ही बस कॉल करके बातचीत करनी है तो भी आप कर सकते हैं. इट्स 9:40. आई डू हैव टाइम फॉर 20 मोर मिनट्स. इसमें ये वाला सॉन्ग मैं आपको ज़रूर सुनवाना चाहती हूँ. इसमें आयुष्मान खुराना है एंड यामी गौतम है. यामी गौतम वॉज इन बॉर्न इन चंडीगढ़ बट शी हैज़ स्ट्रॉन्ग टाइज टू द सिटी. ऑल्सो दिस इज़ देयर डेब्यू फिल्म विकी डोनर. सो टू पीपल फ्रॉम चंडीगढ़ कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग मैजिक ऑन द स्क्रीन.

दोस्ताना फिल्म जिसमें अभिषेक बच्चन, जॉन एब्राहम एंड प्रियंका चोपड़ा, और ये फिल्म काफ़ी पॉपुलर हुई थी. विशाल शेखर जो कि जस्ट लास्ट वीक ही यहाँ पर आए हुए थे डालस में, उनका म्यूज़िक है. एंड आई थिंक ये आवाज़ मास्टर सलीम की है जो इतने पॉपुलर पंजाब से आए सिंगर हैं. बहुत सारी उन्होंने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाए हैं. उनकी आवाज़ तो माय गुडनेस बहुत ऊंची जाती है. ही हैज़ बिन ट्रेन्ड सिंस द एज ऑफ 6, एंड ऑफ कोर्स यू कैन टेल कि वो बहुत वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड सिंगर हैं. एंड दिस इज़ मास्टर सलीम. सो ऑल इन ऑल, किरण खेर जी का मैंने ये सॉन्ग प्ले किया बिकॉज थोड़ी देर पहले हम चंडीगढ़ की बात कर रहे थे, एंड शी इज़ फ्रॉम चंडीगढ़. ओके, सो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने प्राइमरी केयर के पास, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट मिलते होंगे उनके साथ. लेकिन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जो है पूरा बोस्ट करते हैं कि वो एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी पेशेंट को देते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. तो वो अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह जानना चाहते हैं, मेक श्योर करते हैं कि पेरेंट्स ये आई मीन नॉट पेरेंट्स पेशेंट्स जो हैं इस फैसिलिटी के बारे में पूरा अच्छी तरह जान जाएं. That is why they allot at least 30 minutes for every appointment that they make for their patient. Because at Passion Health, you are not just a patient, you are their family. For you, your family, and for the health of the community, Passion Health Primary Care is available. 30 minutes is all that it takes to complete your annual physical. Anxiety care, fibro scan for alcohol-related liver concerns, vitamin D12 deficiency testing, and more are all available at Passion Health. You can schedule your appointment today at 214-666-6259. And this is Passion Health Primary Care that is available for you. चंडीगढ़ की बात हो रही थी, सुरवीन चावला की बात हो रही थी. मैं कभी इतना हार्डकोर पंजाबी सॉन्ग लगाती नहीं हूँ अपने शो पर, बट बहुत अच्छा सॉन्ग है. एंड आई नो कि सब बच्चों को तो डेफिनेटली ये सॉन्ग पसंद आता ही है. Surveen Chawla, who's the model and the actor, was featured in this song sung by Jazzy B.

जिन्ने विच बलिए तू सारी सजदी, ओना देते मित्रा दे बूट। मतलब सिर्फ मेरे जो बूट हैं वो उतने के आते हैं जितने में तू सब अपना ऊपर से नीचे जो है बन ठन कर निकलती है। सो टोटली एक्चुअली यही इसका मीनिंग है। सुरवीन चावला, अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस, टैलेंटेड मॉडल आई गेस, दैट वॉज शी वॉज बॉर्न इन चंडीगढ़। और अब ओमर ख्वाजा के बारे में भी मैं आपको बता दूँ बिफोर द शो एंड्स। आई डोंट वॉन्ट फॉरगेट अबाउट मैंशनिंग हिज एडवर्टाइजमेंट टू यू गाइज। गॉड फॉरबिड इफ देर इज अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट दैट यू मे बी इन्वॉल्व इन, अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, डेफिनेटली थिंक ऑफ ओमर ख्वाजा। ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल, देयरफॉर यू नीड एन अटॉर्नी दैट मेक्स श्योर दैट यू आर कॉम्पनसेटेड फॉर वॉट यू लूज। यू डोंट पे एनीथिंग अंटिल यू विन द केस। फॉर अ फ्री कंसल्टेशन यू कैन कॉल ओमर ख्वाजा, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा, एट 469-300-5046, or you can visit his website, which is attorneyomar.com. Gulpanag, another beautiful dimpled smile model actress jinhone Miss India ka beauty pageant jeeta tha, belongs to an army officer family aur unke jo hai familial ties hain Chandigarh ke saath. कुछ मूवीज में उन्होंने काम किया बट वो सारी मूवीज काफी अच्छी थी. दिस वन विद बॉबी देओल एंड लारा दत्ता, जुर्म,

तुम साथ हो। मिलन सोमन जो कि मेड इन इंडिया वाला जो सॉन्ग आया था वहां से इतने पॉपुलर हुए थे, ही वाज अ मॉडल टू, उन्होंने इस मूवी में एक एंटागनिस्ट यानी कि विलन और एंटा हीरो का रोल प्ले किया था। ये मूवी काफी अच्छी थी, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। जुर्म है इस फिल्म का नाम। अब जो मैं लास्ट सॉन्ग लगाऊंगी वो होगा आज के शो का आखिरी सॉन्ग। फिल्म का नाम है आजा नचले, ब्यूटिफुल सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल।

With this, I do take a leave for today. संडे 8, 7 to 10 ये शो आता है जिसका नाम संडे गपशप, और आपके साथ गपशप होती है ऑन एयर ऑफ एयर. थैंक यू सो मच फॉर योर फोन कॉल्स. थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग सच वंडरफुल सॉन्ग्स. आई एम ऑलवेज ऑनर्ड एंड आई एम सो हम्बल्ड विद योर लव फॉर दिस शो एंड फॉर अस द फनेशिया रेडियो. आज के लिए लेती हूँ इजाजत. मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट संडे 7 to 10 राइट हियर 104.9 FM फनीशा रेडियो. दिस इज आरजे एक रूप साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय. हैव अ वंडरफुल डे.

0: 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
3: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
2: कहाँ?
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
6: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails, and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
10: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
11: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
15: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
17: Dallas ki dhadkan. 104.9 FM, Fun Asia Radio.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555। अ बिग शाउट आउट टू एक रूप फॉर अ फन शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। एंड कमिंग बैक टू जस्ट चिल, सो वेल, संडे होता है हमारा फन फैक्ट सेगमेंट, राइट? तो सोचा कि क्योंकि इतना ये फीफा फीवर इज ऑन, सो हाउ अबाउट आई शेयर सम फन, यूनिक, फनी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अराउंड फीफा वर्ल्ड कप विद यू ऑल, अलॉन्ग विद सम मेलोडियस बॉलीवुड एंड हिंदी पॉप एल्बम सॉन्ग्स। क्या कहते हैं? सो अगर कोई खास गाना है विच यू वांट टू लिसन टू, डू गिव मी अ कॉल, या कोई यूनिक फन फैक्ट है अराउंड फीफा, देन डू गिव मी अ कॉल एंड शेयर इट विद आवर लिसनर्स। स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555।

taken from the movie Dhurandhar. That was Rabba Ho. And yes, this is Madhulika लेकर आई हूँ जस्टिल और आज कर रही हूँ आपके साथ FIFA से related कुछ मजेदार, cool, fun, funny and unique facts share. जैसे कि ये पहला कि आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी है इज नॉट सॉलिड गोल्ड. जी हाँ, वैसे तो ये इतनी खूबसूरत बड़ी दिखती है, राइट? बट इवन दो इट लुक्स मैसिव, द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इज हॉलो इनसाइड. इट्स मेड ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड वेज अबाउट 6.5 केजीज. दैट्स लाइक अराउंड 13.5 पाउंड्स.

That was taken from the movie Dum. बाबूजी जरा धीरे चलो, बट धीरे नहीं. पता है आपको सबसे फास्टेस्ट गोल फीफा में कब हुआ था? जी हाँ, टर्कीज हाकन सुकुर स्कोर्ड आफ्टर जस्ट 11 सेकेंड्स अगेंस्ट साउथ कोरिया इन 2002. यानी कि बहुत से फैंस तो अभी बैठे भी नहीं थे एंड तब तक ऑलरेडी एक गोल हो चुका था.

Well, that was taken from the movie Salaam Namaste, right? And hey, this is Madhulika लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, just chill. Well, आज कर रही हूँ आपके साथ कुछ मजेदार फन और इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स शेयर अराउंड फीफा वर्ल्ड कप. तो आपको पता है कि 2026 ये वर्ल्ड कप जो है, ये पहला वर्ल्ड कप है जो तीन नेशंस जो हैं होस्ट कर रहे हैं. दैट्स यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा एंड मेक्सिको. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट अ वर्ल्ड कप इज बींग होस्टेड इन थ्री कंट्रीज.

Well, that was Ab Toh Forever taken from Tara Rampam and yes, अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले बताना चाहूंगी कि कई बार होता है कि आपको अचानक से डॉक्टर के जाना है एंड आप अपॉइंटमेंट लेना भूल गए एंड अब अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो लंबा ड्यूरेशन है आफ्टर विच यू आर गेटिंग वन. सो हाउ अबाउट अ डॉक्टर वेयर यू कैन गो 7 days अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टेक्सस प्राइमरी केयर की, जो कि 13 साल से टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी एंड नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन. यस, आई एम इंट्रोड्यूसिंग लियोनॉक्सी मेडिकल. जी हाँ, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, लियोनॉक्सी मेडिकल जो है ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, चाहे हो अर्जेंट केयर या इन हाउस लैब टेस्टिंग. आपको एक्सरेज कराने हैं, सिटी स्कैंस, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स या फिर हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज यूज करनी है, दे आर ऑल अंडर वन रूफ. दे आर ओपन 7 days अ वीक. येस, यू हर्ड दैट राइट, ओपन 7 days अ वीक, 8 AM टू 8 PM एंड यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड whatsoever. How wonderful is that? That's Lenoxy Medical for you in Frisco.

0: memories don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: ये तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव अ 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ। विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभाल लेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
15: The Dill of Dallas. Heart to heart. Fun.

Well, that was taken from the movie Hum Tum. And yes, this is Madhulika लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, Just Chill. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखे याद, 972-235-5555. Just Chill में संडे को होता है फन फैक्ट सेगमेंट, और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कुछ फन, फनी, यूनिक एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अराउंड फीफा वर्ल्ड कप. लेकिन अगला फैक्ट शेयर करूं और अगला गाना प्ले करूं उसके पहले मैं बताना चाहूंगी भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ज़रूरी हैं राइट बताना. जैसे कि कभी आप या आपका कोई जानकार कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाए, या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट है, तो आपको रखना है एक ही नाम याद, एंड दैट इज़ अटर्नी ओमर ख्वाजा. क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी से भी आपकी तरफ से डील करेंगे, आपका केस लड़ेंगे, आपको जो आप सच में कॉम्पनसेशन डिजर्व करते हैं वो दिलवाएंगे, एंड साथ ही साथ आप उन्हें पे नहीं करते टिल यू विन योर केस. सो अनटिल यू विन योर केस यू आर नॉट पेइंग हिम एनीथिंग. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 469-300-5046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com. दैट्स attorneyomar.com. अच्छा, अब अगर मैं बताऊं दैट कोई एक और फन फैक्ट आपको, तो बताना चाहूंगी that the oldest World Cup goal scorer, you know, Cameroon's Roger Miller scored at 42 years old in 1994. So till now he's the oldest World Cup goal scorer. And the next one is a song request. Adnan Sami and Amitabh Bachchan dikhe the is gaane mein. I'm sure you've guessed it. It's Kabhi Nahin.

That was Kabhi Nahi by Adnan Sami and Amitabh Bachchan. And yes, before I play the next song, भाई संडे है और यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि कहीं बाहर जाएं, कुछ अच्छा अच्छा खाएं. एंड कई बार होता है कि ब्रेन फॉग हो जाता है, इतने सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, याद नहीं आता कि कहाँ जाना चाहिए. तो मैं हूँ ना, मैं बताऊँगी आपको कि आप जा सकते हैं Page 3 Eatery भी, बिकॉज यहाँ आपको एक नए नए फ्लेवर्स मिलेंगे. राइट, दिस इज़ एट हब 121 एंड Page 3 Eatery इज़ वेयर यू गेट बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड वेयर इट मीट्स मॉडर्न फ्लेयर, यानी कि कबाब्स, चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स. और जो वाइब है ना वहाँ की, इट्स वेरी वाइब्रेंट एंड यू कैन गो देयर फॉर ब्रंच, फॉर लंच, फॉर टी, फॉर डिनर. यू नो इट्स परफेक्ट फॉर फूडीज, इट्स परफेक्ट फॉर डेट्स एंड इट्स परफेक्ट फॉर फ्लेवर चेजर्स. सो विजिट Page 3 Eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स.

वेल दैट वाज टेकन फ्रॉम किस्मत कनेक्शन, राइट। एंड आज जैसा कि मैंने बताया कि जस्ट चिल में हम शेयर कर रहे हैं कुछ मजेदार फन फैक्ट्स, राइट। तो आपको बताऊं कि जैसे कल का गेम हुआ था, कई लोग कहते हैं कि इतना हाई स्कोरिंग गेम था, बट डिड यू नो दैट वंस यू नो वर्ल्ड कप मैच में देयर वाज अ स्कोर ऑफ 10-1। जी हाँ, 1982 में हंगरी डिफीटेड एल सवाडोर 10-1, एंड इट्स स्टिल द हाईएस्ट स्कोरिंग मैच इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। सो इमेजिन 10-1 द स्कोर वॉज इन 1982। एंड यस, आपको बताऊं दैट प्रभु देवा के अगर आप फैन हैं, जो कि सभी होते हैं, राइट, तो वो आ रहे हैं लाइव आपके लिए परफॉर्म करने। जी हाँ, मठंगी एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली ब्रिंग्स इंडियाज माइकल जैक्सन प्रभु देवा लाइव टू DFW। जॉइनिंग हिम आर लॉरेन गोटिब, सोनल भदूरिया, अलेक्जेंडर नोएल, हरिनी नीलाकांतन, नताशा शर्पा एंड सानवे मेघना फॉर द अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट। ये एक डांस कॉन्सर्ट होने जा रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे August 1st एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर। इट्स इन ग्रैंड प्रेरी। सो बुक योर टिकट्स नाउ, कॉल देम, द नंबर इज 248-233-3828। मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। अगर आपको कॉल नहीं करना है, देन यू कैन गो टू आर यू नो फन एशिया नेटवर्क के सोशल मीडिया पेजेस पर, वहां पर आप इजिली इस कॉन्सर्ट के लिए टिकट्स जो हैं बुक कर सकते हैं। सो दैट्स प्रभु देवा।

0: 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो।
9: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco, offer valid till 19 July only.
12: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
13: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
14: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

taken from the movie Love Aajkal. That was a twist. This is Madhulika लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. और आज हम Just Chill के Fun Fact सेगमेंट में शेयर कर रहे हैं FIFA से related कुछ यूनिक, फन, फनी, इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ. एंड साथ ही साथ सुन रहे हैं कुछ मजेदार गाने. सो वेल, अगला फन फैक्ट जो मैंने सर्च किया है वो ये है दैट ब्राजील हैज प्लेड इन एवरी सिंगल वर्ल्ड कप. जी हाँ, सिंस द टूर्नामेंट बिगैन इन 1930, ब्राजील जो है हैज नेवर मिस्ड अ सिंगल वन. एंड इन फैक्ट दे ऑल्सो हैव द मोस्ट टाइटल्स एवर. दे हैव वन 5 वर्ल्ड कप्स. यू नो हाउ कूल इज दैट.

वेल जब मैच होता है तो मजा तो बहुत आता है, लेकिन कभी कभी जब टाई हो जाता है एंड पेनल्टी शूट आउट्स पर बात आ जाती है, सो यू नो कई सारे दिल जो है वो टूट जाते हैं. जी हाँ, पेनल्टी शूट आउट्स हैव ब्रोकन मिलियंस ऑफ हार्ट्स, बट नो नेशन वॉन्ट्स टू हियर आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम दैट इट्स गोइंग इन टू पेनल्टीज. कहते हैं कि इंग्लैंड बिकेम फेमस फॉर लूजिंग सेवरल वर्ल्ड कप पेनल्टी शूट आउट्स बिफोर फाइनली विनिंग वन इन 2018.

Well, that was a slow motion Angreza taken from the movie भाग मिल्खा भाग. एंड यस, अगर आप भाग रहे हैं अपने उस ड्रीम होम के पीछे, तो वो ड्रीम होम एक सच्चाई, एक रियलिटी बन सकती है. जी हाँ, योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मोर्गेज. जी हाँ, 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इंटू रियलिटी विद पर्सनलाइज मोर्गेज सोल्यूशन एंड अ स्मूद स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन टेलर्ड टू योर नीड्स. तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस हिसाब से वो आपके जो लोन ऑप्शन हैं वो टेलर कर सकते हैं, वेदर यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम और यू आर अपग्रेडिंग और यू आर रीफाइनेंसिंग. यू नो, सो स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विथ कॉन्फिडेंस टूडे. आप ड्रीम होम मोर्गेज को कॉल करें, द नंबर इज 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. And the next one is a song request. Thank you so much for calling in.

Well, that was काटा लगा एंड वेल अब आ गया है आपके लिए एक गिव अवे. और आज क्योंकि हम फीफा की ही बातें कर रहे हैं, राइट, फीफा वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ उसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाए आपसे. तो पहले तो बता दूं कि ये गिव अवे है फ्लेवर लाउंज की तरफ से, जहां पर यू हैव अ चांस टू विन दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. दिस गिव अवे इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली. तो आपको वहां जाके खाना खाना होगा एंड आपको या तो ये ढाबा स्टाइल चिकन करी या फिर दाल मखनी मिलेगी मुफ्त मुफ्त मुफ्त. सो वेल, बस ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा दैट आप पिछले एक महीने में ये गिव अवे ना जीते हों, राइट, बिकॉज वी वॉन्ट अदर लिसनर्स टू गेट अ चांस टू विन दिस गिव अवे एज वेल. तो सवाल कुछ ऐसा है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब मुझे जल्दी से जल्दी देंगे. तो फ़ोन करना है आपको, तो नंबर इज़ 972-235-5555 पर, एंड मुझे बताना है कि इंडिया एक बार, यू नो, वैसे तो इंडिया हैज़ नेवर प्लेड एट फीफा वर्ल्ड कप, बट दे ऑफिशियली डिड क्वालिफाई फॉर द टूर्नामेंट वंस. लेकिन कुछ मिथ है कि भाई फीफा ने उनको बिना जूतों के खेलने अलाउ नहीं किया, लेकिन एक्चुअली शायद रीजंस ये भी थे कि यू नो फाइनेंशियल बर्डन, लैक ऑफ प्रिपरेशन टाइम एंड प्रायोरिटाइजिंग ओलंपिक्स ओवर द वर्ल्ड कप, एंड इसीलिए इंडिया विड्रू फ्रॉम इट. लेकिन आपको मुझे बस बताना ये है कि ये कौन से साल की बात है, इन विच ईयर डिड इंडिया क्वालिफाई फॉर फीफा बट दे ऑफिशियली, आई मीन दे विड्रू फ्रॉम इट. तो आपको मुझे बस वो ईयर बताना है दैट विच ईयर डिड दिस हैपन दैट इंडिया विड्रू फ्रॉम फीफा बिकॉज उनको ओलंपिक्स में प्रायोरिटाइज करना था. सो गिव मी अ कॉल, द नंबर इज़ 972-235-5555.

0: ऑलराइट, तो मैंने पूछा था आपसे एक सवाल कि किस साल में ऐसा हुआ था दैट इंडिया क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप बट विथड्रू बिफोर द टूर्नामेंट फॉर सेवरल रीजंस इंक्लूडिंग ट्रैवल कॉस्ट, प्रिपरेशन एंड नॉट सिंपली बिकॉज दे वांटेड टू प्ले बेयरफुट डिस्पाइट द पॉपुलर मिथ. एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो,
0: हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग गुड. तो आंसर वाज दैट इंडिया डिड क्वालिफाई इन 1950 फॉर फीफा वर्ल्ड कप इन ब्राजील, बट
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली
1: दे
0: सही जवाब दिया.
1: क्वालिफाई
0: एंड आपका
1: दे डिडंट.
0: नाम
1: जी राहुल.
0: राहुल. ऑसम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया ये गिव अवे. एंड आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर, टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू. बट आज का क्या प्रेडिक्शन है, कौन जीतेगा?
1: मेरे को तो ऑनेस्टली आई हैव लॉस्ट होप, बिकॉज जो अर्जेंटीना क्या है रिसेंटली इजिप्ट के साथ, सो यू नो
0: अच्छा,
1: आई से दैट कि फीफा में भी ऐसा होता है करके.
0: नहीं, बट आई रियली विश एंड होप दैट द बेस्ट टीम शुड विन. बट आई टेक यू ऑफ एयर फॉर सम डिटेल्स एंड आई विल प्ले अनदर सॉन्ग फॉर आवर लिसनर्स.
1: थैंक यू.
0: थैंक यू.

0: करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
10: The Dill of Dallas, heart to heart.

taken from the movie Dirty Picture, that was Ooh La La. And yes, this is Madhulika, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggest, Just Chill. Well, कर रही हूँ आज आपसे FIFA से रिलेटेड कुछ मजेदार, फन, इंटरेस्टिंग, यूनिक फैक्ट्स शेयर. जैसे कि ये अगला फैक्ट, आपको पता है FIFA वर्ल्ड कप 2026 हैज थ्री ऑफिशियल मैस्कॉट्स रिप्रेजेंटिंग द थ्री होस्ट कंट्रीज, मेपल द मूज कनाडा का, जायू द जैगुआर मेक्सिको, एंड क्लच द बॉल ईगल यूनाइटेड स्टेट्स. बेसिकली मेपल इज पोर्ट्रेड एज अ गोलकीपर, जायू एज अ स्ट्राइकर, एंड क्लच एज अ मिडफील्डर. सो टुगेदर दे फॉर्म अ मिनी फुटबॉल टीम.

taken from the movie Taal, that was Ramta Jogi. Achha, before I play the next song, ek aur mazedar unique fun fact hai FIFA World Cup se related. Aapko pata hai, the original Jules Rimet Trophy was actually stolen in England before the 1966 World Cup. और एक डॉग नेम्ड पिकर्स उसने उस ट्रॉफी को ढूंढ लिया एज ही फाउंड इट रैप्ड इन न्यूज़पेपर अंडर अ हेज व्हाइल आउट फॉर अ वॉक सो दैट पिकर्स दैट डॉग बिकेम सुपर हीरो आई मीन क्वाइट फेमस.

Well, you are listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल. जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggest, just chill. Well, आज कर रही हूँ आपके साथ कुछ मजेदार, यूनिक, फन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर रिलेटेड टू फीफा वर्ल्ड कप. भाई आज तो द मैच होने जा रहा है, तो सोचा आपके साथ कुछ मजेदार बातें करूं शेयर. आपको पता है कि द फर्स्ट रेड कार्ड वॉज नॉट शोन अंटिल 1974, बिकॉज उसके पहले क्या होता था कि रेफरीज जो होते थे, दे वुड सिंपली गो एंड स्पीक टू द प्लेयर्स. जी हाँ, यू हर्ड दैट राइट. बिफोर येलो एंड रेड कार्ड्स एग्जिस्टेड, रेफरीज वुड सिंपली गो एंड स्पीक टू प्लेयर्स. Cards debuted in 1970, but the first actual red card was shown at a World Cup, which came in 1974.

Well, it's always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way. और आज फीफा वर्ल्ड कप के अराउंड के फन फैक्ट्स शेयर करके मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज भी मिली एंड वो मैंने पास ऑन भी की. एंड आप कहीं जाइएगा नहीं, डू स्टे ट्यून इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, एज यहाँ हमारे शोज एंटरटेन करते रहेंगे आपको. कमिंग अप नेक्स्ट इज नीलम. मैं मिलूंगी आपको अगले शनिवार सुबह 10 बजे इन जस्ट चिल, जहाँ करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. जाते जाते ये भी कहूँगी दैट सॉकर सिर्फ एक गेम नहीं, जज्बात है. आज करोड़ों दिल एक ही मैच के साथ धड़केंगे, चाहे आप किसी भी टीम को सपोर्ट करते हों. आज बस एक ही दुआ है दैट मैच जो हो वो यादगार हो, फेयर हो, और ट्रॉफी जो है उस टीम को मिले, उस टीम के हाथ में जाए जो आज सबसे बेहतर सॉकर खेलेगी. वेल, एंजॉय एवरी मोमेंट बिकॉज वर्ल्ड कप फाइनल्स डोंट कम अराउंड एवरी डे. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: Also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
4: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
5: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco, offer valid till 19 July only.
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में? सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: Pets, what are we going to do?
1: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
0: क्या मतलब?
1: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
1: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: ये तारा वो तारा हर तारा.
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

वेलकम बैक, दिस इज़ केजीएमवी 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो पे। मैं हूँ नीलम आपके साथ और सुन रहे हैं आप ये कार्यक्रम जिसका नाम है सुरीले लम्हे, जहाँ इस सेगमेंट में मेरी कोशिश होती है फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर सिर्फ और सिर्फ असली संगीत का जादू। जी हाँ, मैं रहती हूँ आपके साथ हर रविवार की दोपहर 2 बजे तक ये सेगमेंट के साथ, ऐसी धुन, ऐसी बातें, ऐसे गाने जो सीधे आपके दिल को छू जाए। जी हाँ, म्यूज़िक की बातें, संगीत की बातें होती है, बहुत सारे गाने बॉलीवुड की फिल्मों से थोड़े से दूर, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट वॉइसेस, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, प्राइवेट एल्बम सेल होती है गाने, गज़ल भी होती है, वेब सीरीज़ के गाने, पाकिस्तानी ड्रामास के गाने, जो फिल्मी नहीं होता वो बिल्कुल, बहुत सारे ऐसी बातें और गाने हम आपके लिए लाते हैं यहाँ पे एवरी संडे बिटवीन 1 एंड 2 PM ऑन 104.9 FM।

104.9 FM फनीशा रेडियो, मैं हूं नीलम आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड्स। सैटरडे संडेज आपका और हमारा ये साथ होता है, म्यूजिकल मुलाकातें होती है, और ये आज की मुलाकात है, म्यूजिकल मुलाकात छोटी सी होती है, थोड़ी सी छोटी होती है, एक ही घंटा होता है आपका और हमारा इस सेगमेंट में। खैर कोई बात नहीं, जितनी बातें होती है, गाने होते हैं, वो बहुत होते हैं म्यूजिकल संगीत से भरे हुए। और इस सेगमेंट में जैसे कि मैंने कहा, मेरी कोशिश होती है कि फिल्मी चकाचौंध से दूर जो गाने आप अक्सर सुनते ही हैं, इस सेगमेंट में कुछ थोड़ा सा अलग, जो गाने सीरीज से लेके, ड्रामा से लेके, कुछ शोज, कॉन्सर्ट्स वगैरह वगैरह। तो अगला जो गीत आपको मैं सुनवाने जा रही हूँ, ये फिल्म के लिए बहुत कुछ आपने सुना है, आपने भी ये फिल्म देखी होगी बिल्कुल, क्योंकि ये फिल्म का नाम है कला। नेटफ्लिक्स की ये फिल्म 3 या 4 साल पहले आई थी, और तृप्ति डिमरी इसमें जिन्होंने अभिनय किया था। ये जो फिल्म थी 1930s या 40s के जो दशक की बात है, कोलकाता के बैकग्राउंड में बनी थी, और एक सिंगर, एक गायक की सफलता के लिए उनका क्या मानसिक तनाव हो सकता है, क्या प्रेशर हो सकता है, उसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाई गई थी ये सारी बातें इन दिस फिल्म। ये सारी बातें तो आपने सुनी है, जानिए, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होगे कि इस फिल्म से मशहूर गायक जो है, उनके भाई जो है, उनके छोटे भाई मीका सिंह की मैं बात कर रही हूँ, और वो जो छोटे भाई है अली खान, उन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया था। जी हाँ, पहली बार इस फिल्म में वो नज़र आए थे, इस सिंगर के छोटे भाई ने। खैर बातें होती रहेंगी, लेकिन चलिए इसी फिल्म से सुनते हैं ये गीत, फेरो ना नजरिया। अमित त्रिवेदी का संगीत, श्री शाह की आवाज़, 104.9 FM।

इस कदर प्यार है बात सोनू निगम ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो। अगर आप भी हमारी तरह सोनू निगम के बहुत बड़े फैन हैं या फैन है, चलिए बहुत नहीं तो एटलीस्ट फैन है, राइट, तो अगर सोच रहे कि कहाँ है भाई आजकल वो, इतनी फिल्मों में नज़र नहीं आते, आई मीन उनकी आवाज़ नज़र नहीं आती, सुनी नहीं जाती, तो फिल्मों में कम गाते हैं, ऑफकोर्स फिल्मों में अब इतना नहीं गाते। उनकी एक आखिरी फिल्म, आखिरी तो मैं नहीं कहूँगी बट रिसेंटली मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी इन द फिल्म दादी की शादी, जिसमें नीतू सिंह थी और सुनिधि चौहान के साथ उनकी बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी आवाज़ पता चल जाती है, राइट, व्हेनेवर यू हियर दिस सॉन्ग और एनी उनकी जहाँ जहाँ भी उनकी प्यार भरी आवाज़ सुनते हैं। खैर, तो वो आजकल प्राइवेट एल्बम्स बहुत कर रहे हैं, जैसे कि श्रेया घोषाल, शान, जितने भी हमारे 90s के सिंगर्स हैं वो कुछ अलग करना चाहते हैं, राइट, आफ्टर द प्लेबैक सिंगिंग में इतनी कुछ बातें हासिल करने के बाद। एंड व्हाट सोनू निगम इज़ डूइंग दिस डेज कि वो आजकल सलीम सुलेमान के साथ बहुत काम करते हैं, उनके जो भी भूमि कॉन्सर्ट्स होती है, उनकी और भी कुछ कॉन्सर्ट्स होती है, उनके एल्बम्स होते हैं, उसमें सोनू निगम उनके साथ काम कर रहे हैं। आज मौका मिला तो चलिए मैं आपको एक का गीत बिल्कुल सुनवाना चाहूँगी जो सोनू निगम ने और सलीम सुलेमान ने साथ में काम किया है। ऐसे बहुत सारे गाने प्राइवेट एल्बम से मैं नीलम लाती हूँ आपके लिए एवरी वीकेंड ऑन संडेज, एक्चुअली एक से दो के बीच में।

आओ सजन अंगना मोरे। आपको लॉकडाउन याद है? अनफॉर्चुनेट टाइम राइट हमारे सबके लिए कि हम घर पे फंस गए थे, एंड देन ऑफकोर्स वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम वगैरह वगैरह, बच्चों की स्कूल्स भी घर से हो रही थी, तो हम अगर बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि चलिए वर्किंग फ्रॉम होम तो है ही, अगर सोशलाइज नहीं कर रहे थे तो कुछ और घर पे काम कर लिया, प्रोजेक्ट्स कुछ घर के कर लिए, क्लीनिंग वगैरह कर ली, कुछ और किताबें पढ़ ली। आर्टिस्ट क्या करते हैं, आर्टिस्ट जब बोर हो जाते थे उन दोनों दौरान, उन्होंने सोचा कि मैंने अभी तक कोई गाना कंपोज नहीं किया तो कंपोज करने लगी थी। और मैं बात करी हूँ श्रेया घोषाल की। जी हाँ, ये जो गीत आपने अभी सुना लॉकडाउन के दौरान, जब श्रेया ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो इतना बोर महसूस कर रही थी, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैंने कभी गाना कंपोज नहीं किया है। शी ऑलवेज इज अ सिंगर राइट, हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी खूबसूरत गायिका है, लेकिन कंपोजर कभी नहीं रही थी। तो ये गीत जो आपने सुना अंगना मोरे, आओ पिया अंगना मोरे, ये गीत खूब दोनों की उनकी आवाज़ में भी है और कंपोजर भी खुद श्रेया घोषाल ही है। तो लॉकडाउन के दौरान ये सारी बातें की, और सौम्यदीप घोषाल जो उनके भाई है, उनका साथ मिला उनको इलेक्ट्रॉनिक और क्लासिकल म्यूज़िक का जो एक बेहतरीन फ्यूज़न करने के लिए। तो अंगना मोरे ये गाना तो तैयार हो गया, कंपोज भी किया, गाना भी गा लिया था, एंड आफ्टर दैट शी रिलीज दिस एल्बम विच वेंट वायरल। बहुत लोगों को पसंद आया था, एंड देन विथ वेरी वेरी मच प्राइड शी डिक्लेयर्ड कि ये पहला गीत है मेरा जो मैंने खुद जिसकी धुन बनाई है। क्या बात है श्रेया घोषाल, यही कहते हैं एक अच्छा आर्टिस्ट, सच्चा आर्टिस्ट जो कुछ नया, हमेशा कुछ नया करने की चाह में हो। और ये सारी बातें, ये सारी चाहते हम आपके लिए लाते हैं ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो। चाहते और बातों की बातों में चलिए हम आपको हेल्थ की बात भी बता दें, क्योंकि कहा जाता है ना कि जान है तो जहान है। तो आपकी हेल्थ के लिए एक ऐसा नाम जिसका नाम है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जहाँ पे आपके लिए 30 मिनट्स के अपॉइंटमेंट स्केड्यूल की जाती है। आज ही कॉल कीजिएगा 214-666-6259। एंग्जाइटी केयर हो, एनुअल फिजिकल हो, या कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी की बात हो, आपके लिए एक ही नाम, वंस अगेन दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर 214-666-6259। बातें होती रहेगी, गाने चलते रहेंगे आप ही के लिए ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ फिल्में नहीं, ज्यादातर गैर फिल्में ऑन संडेज।

0: जीनी
1: हुकम मेरे आका,
0: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
1: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
0: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
1: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
0: और एंटरटेनमेंट,
1: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
0: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
1: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
2: बेटा 95% आए?
3: हाँ मम्मी।
2: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
9: हाय, दिस इज कोंकणा सेन शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।
10: एंड वेलकम बैक, दिस इज केजीएमपी 104.9 एफएम वनेशा रेडियो। मैं हूं नीलम, आपके साथ रहती हूं एवरी वीकेंड, सैटरडेज एंड संडेज। सैटरडेज 3 बजे तक आपका और हमारा साथ, एंड संडेज 2 बजे तक होता है ये म्यूजिकल साथ आप ही के लिए ऑन 104.9 एफएम। और आज के दिन ये सेगमेंट में आपके लिए गाने लाती हूँ जो ज्यादातर होते हैं गैर फिल्मी, पाकिस्तानी ड्रामा, वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की कुछ होती है बातें इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ। बातें होती रहेंगी, लेकिन चलिए हमें हमारा प्रोजेक्ट भी बिल्कुल उन्हें शुक्रिया अदा भी करना होता है। तो तारा कमर्शियल एनर्जी को हम याद कर लेते हैं, taraenergy.com 8444282808। वंस अगेन, दैट इज 8444282808। और यू कैन विजिट taraenergy.com। बिजनेस में है 2002, जी हाँ, विद कम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स। एक ही नाम, तारा एनर्जी। और वनेसा इवेंट्स, देखिए हमारे घर में छोटे बड़े इवेंट्स हो या कुछ सेलिब्रेशन की बात हो, बड़े माइलस्टोन हो, शादी है, ग्रेजुएशन है, बर्थडे इवेंट्स वगैरह वगैरह, अक्सर हम सोचते हैं कि भाई काम इतना होता है कि कौन इतना सारा काम करे, राइट, इनको कॉल करो, वो वेंडर, ये वेंडर, और फिर उसी काम में हम भूल जाते हैं अपनों के साथ वक्त बिताना। लेकिन अगर आपके लिए कुछ ऐसी बात हो कि सारे काम आपके लिए कोई इवेंट प्लानर कर दे, क्या बात है, तो वो है नाम आप ही के लिए वनेसा इवेंट्स का। वनेसा इवेंट्स, जहाँ पर आप आपकी जितनी भी यादें बनाना चाहे, खूबसूरत यादें आपके लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, परिवार के साथ, तो एक ही नाम वनेसा इवेंट्स। यू कैन कॉल हरी 4694428770, दैट इज 4694428770। वंस अगेन, दैट इज वनेसा इवेंट्स और मैं हूँ नीलम आपके साथ। चलिए चलते हैं ये खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी ड्रामा जो था मेरी जिंदगी है तू, जिससे गाना सुनना चाहे आप ही ने ऑन 104.9 एफएम।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।
1: मेरी जिंदगी
2: मेरी जिंदगी है तू जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें सुनने के लिए और आपके ढेर सारे कॉल्स के लिए। चलिए, मेरी जिंदगी है तू से हमारे एक और लिसनर को ये ड्रामा याद आ गया, मीम से मोहब्बत और इवान की पसंद पे। सुनते ही गीत ऑन 104.9 FM।

कुछ गैर फिल्मी गाने, कुछ गैर फिल्मी बातें विथ मी योर होस्ट नीलम एवरी संडे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई नो यू आर गोइंग टू गो फॉर अ गेम। और मुझे बहुत सारे लिसनर्स हमें फ़ोन कर मुझे पूछे आप नहीं देखने वाली? बिल्कुल नहीं देखने वाली क्योंकि भाई आप देख रहे हैं वही काफ़ी है। हम संगीत की बातें करते हैं आपके साथ और 104.9 FM फनेशिया रेडियो। अच्छा, राजकुमार हिरानी का नाम तो आपने सुना ही है, एक ऐसे दिलचस्प फिल्म मेकर्स में कहूँगी और बहुत ही दमदार फिल्म मेकर्स, मुन्ना भाई MBBS की बात हो, लगे रहो मुन्ना भाई की बात हो, या थ्री इडियट्स संजू, बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले राजू हिरानी। मैंने पिछले हफ्ते भी ये बात की थी कि अब उन्होंने वक्त के साथ कदम ताल मिला लिए हैं, मीनिंग कि वो अब तक फिल्म बना रहे थे, पहली बार OTT पे उन्होंने रुक किया और वेब सीरीज बना दी प्रीतम और पेड्रो। अरशद वारसी के साथ जो कलाकार है वो उनके ही बेटे हैं, उनका नाम है वीर हिरानी। बट यू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ऑफकोर्स ये तो मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताई थी, लेकिन रिसेंटली मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें चौंका देने वाली बात उन्होंने ये कही कि बेटे वीर को जब एक्टिंग करनी थी, फिल्मों में आना था, तब उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने यानी कि राजकुमार हिरानी ने, कि भाई एक्टर मत बनो, इफ़ यू वांट टू बी अ फिल्म मेकर तो फिल्म मेकर बन जाओ, आप शॉर्ट फिल्म सब भी बनाते हो, मेरे साथ फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस भी है, तो व्हाई डू वांट टू मेक बिकम एन एक्टर। तो उन्होंने कहा कि भाई पापा आपने ही कहा था कि थ्री इडियट्स में कि जो दिल चाहे वो करो, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे एक्टर बनना है, फिल्म मेकर नहीं बनना। बस इसी बात पर उन्होंने हामी भर दी। वरना राजकुमार हिरानी को अब भी लगता है कि बेटा जो है एक्टिंग में शायद कहीं ना कहीं वो तालमेल नहीं पिला पाएंगे, जो कम्पिटिटिव एज है हमारी इंडस्ट्री में, उन्हें लगता था कि फिल्म मेकिंग इज़ बेटर। बट खैर, पापा ने ही तो कहा था थ्री इडियट्स में जो दिल चाहे वही कर लो।

बात है, मेमे खान साहब और उनके साथ थे आदित्य रिखाड़ी जी। हाँ, बहुत ही उभरते हुए कलाकार बन गए सितारे। रातों रात उनके कुछ दो या तीन ऐसे गाने गाए एंड आफ्टर दैट ही डिड अपियरेंस इन कोक स्टूडियो भारत, जिसमें भी उनको बहुत बहुत अच्छी सराहना मिली। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड। अच्छा, आपको रक्तांचल यानी कि पॉलिटिकल ड्रामा देखना अच्छा लगता है, और आपने रक्तांचल वेब सीरीज़ की पहली दो सीज़न ऑलरेडी देख चुके हैं आप, तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि जुलाई 16 को रिलीज़ हो गई है तीसरी सीज़न, जहाँ पे अगेन द सेम गैंग वॉर है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, क्राइम ड्रामा, सब कुछ मिक्स है। तो अगर आप इफ़ यू एन्जॉय सच काइंड ऑफ स्टोरी, सच काइंड ऑफ स्टोरी लाइन्स, आपके लिए है ये ऑन द अमेजोन एमएक्स प्लेयर ऑन 16th ऑफ जुलाई से।

अगर आप डांसिंग करते हैं या डांसिंग एंजॉय करते हैं देखना, तो आपको ऐसा कौन होगा जो प्रभु देवा का नाम नहीं जानता होगा, है ना? इंडिया के, हमारे इंडिया के माइकल जैक्सन जाने जाते हैं वो। तो वो हो गया आपके लिए लाइव इन डैलस। जी हाँ बिल्कुल, अगस्त 1, नॉट टू फार, टेक्सास ट्रस्ट सीयू थिएटर ग्रैंड प्रेरी में है। अगर आपको टिकट लेनी है तो प्लीज़ कॉल कीजिएगा 248-333-2333-3828। वंस अगेन दैट इज 248-233-3828। मीडिया पार्टनर इज़ फनेशिया नेटवर्क। वंस अगेन इट इज़ हैपनिंग ऑन अगस्त 1 एट द TCU ग्रैंड प्रेरी ऑन सैटरडे। डांस से मुझे एक बात याद आ गई, तो चलिए थोड़ा सा ये गीत सुन लेते हैं, उसके बाद एक बहुत ही फनी सा वाक्य मैंने कहीं पर सुना फॉर द शो इंडियाज़ गॉट लैटेंट। जी हाँ, ये आप जानते होंगे कि समय रैना की है ये सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स और उसी के साथ यूट्यूब पर भी होती है स्ट्रीम। तो एक गाने के लिए उनकी एक बात वायरल हुई है, उनका ही गीत एक शो का, चाय की टपरी। जी हाँ, ये शो का जो गीत है चाय की टपरी, 500 मिलियन व्यूज़ मिले हैं उसे यूट्यूब पर। लेकिन बाद में एक शॉकिंग खबर बाहर आई, क्या? थोड़ी सी बात करते हैं उसकी, थोड़ा सा गीत सुन लेते हैं।

कविता शेठ की आवाज़ में सुन रहे हैं आप खरी खरी सुना दे रे रसिया, उनके साथ मम्मी खान भी होंगे। वेल तो मैं बात कर रही थी गाने की कि इंडियाज गॉट लेटेंट में एक गाना है चाय की टपरी। जी हाँ, ये गाने का टाइटल है, राइट। और ये गाना इतना वायरल हो गया है, 500 मिलियन व्यूज़ मिले, खास कर उस पर जब उनके एक शो में आलिया भट्ट आई थी, अल्फा की हीरोइन, ऑफकोर्स आलिया भट्ट के साथ शर्वरी भी आई थी और दोनों ने इस शो पर डांस किया था। तो तब से ये गाना है बहुत ही वायरल हो गया। लेकिन अब पता चला है कि भाई ये जो गीत है जिस चाय की टपरी, मैंने अभी तक नहीं सुना, नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू मुझे भी सुनना पड़ेगा। ये गीत एआई ने ही गाया है और एआई ने ही बनाया था, तो जिसकी बात खुद समय रैना ने की थी कि भाई ये गाना किसी सिंगर का नहीं है, कोई कंपोज़र नहीं है, खुद एआई साहब है जिन्होंने ये गीत को कंपोज भी किया और गा भी रहे। क्या बात है, लुक एट द टेक्नोलॉजी। और वो गीत हो रहा है, 500 मिलियन व्यूज़ उसे मिल रहे, और बेचारे जो हमारे अच्छे सिंगर्स, जेन्युइन सिंगर्स गाते हैं, उन्हें कोशिश करनी पड़ती है कि भाई कहीं से हमारी आवाज़ दिलों तक पहुंच जाए। लेकिन वो काम है हमारा, आपके लिए लाते हैं कुछ ऐसी आवाज़ें जो आप बार बार फिल्मों में नहीं सुनते, कुछ ऐसे गाने जो आप फिल्मों में नहीं सुनते। गैर फिल्मी गानों की ये महफिल, एवरी संडे विथ मी योर होस्ट नीलम टिल 2 PM।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम.
3: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
3: कहाँ?
2: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
0: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं.
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं.
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं.
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax. Your growth, our strategy.
0: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
10: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
9: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
10: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app. For exclusive deals. The Flavor Lounge. Her by Super Hit.
11: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
12: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
13: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails, and live music and DJ nights. And guess what?

स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अम्ब्रीन हसनाथ, एंड आई विल बी विथ यू टिल 6 PM. टुडे इज द 19th of July 2026, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. एंड तैयार हैं आप हमारे नॉन स्टॉप 90s के सेगमेंट के लिए. आज हम चलेंगे, as in this is the next step of our segment since we started it last week on Sunday. 1990 की हिट फिल्मों के हिट गाने हमने आपको सुनवाए, और आज हम शुरुआत करेंगे 1991 की हिट फिल्मों के हिट गानों की. तो आइए फिर सुनते हैं साजन फिल्म का ये सुपर हिट गाना.

आज आपको एक से बढ़कर एक रोमांटिक गाने सुनने को मिलेंगे इन आर नॉन स्टॉप 90s का सेगमेंट, जिसमें आज हम फोकस कर रहे हैं 1991 की हिट फिल्मों के गाने। जो गाना अभी आपकी खिदमत में पेश किया फिल्म साजन से लिया गया था। ये गाना संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज किया गया था। वैसे इस फिल्म में सलमान खान भी थे। इस गाने में आवाजें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। आई होप यू एंजॉयड दैट सॉन्ग। नॉन स्टॉप 90s ब्रॉट टू यू इन पार्ट बाय अटर्नी ओमार ख्वाजा। इफ गॉड फॉरबिड यू आर इन एनी काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट और ए स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, रिमेंबर यू कैन रीच आउट टू अटर्नी ओमार ख्वाजा 24/7 4693005046 उनका नंबर है। आई एम श्योर अभी आप खैरियत से हैं, लेकिन जस्ट इन केस इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लें ताकि गॉड फॉरबिड इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर यू नीड हिज हेल्प यू हैव द नंबर हैंडी 4693005046 और विजिट attorneyomar.com विद दिस कंफर्ट इन माइंड कि वो आप को फ्री कंसल्टेशन देंगे और इसके अलावा आपको कोई फीस भी चार्ज नहीं करेंगे अनलेस यू विन द केस। सो हियर इज अ नेम एंड ए फर्म दैट यू कैन ट्रस्ट व्हिच इज लॉ ऑफिसेस ऑफ अटर्नी ओमार ख्वाजा। नॉनस्टॉप 90s के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं, लेकर चलते हैं आपको 1991 की सेकंड ब्लॉकबस्टर फिल्म के इस गाने की तरफ।

मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाज में सुन रहे थे आप हम फिल्म से लिया गया ये गाना। 1991 में रिलीज होने वाली ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। मतलब कौन था जो इस फिल्म में नहीं था। एवरीवन फ्रॉम अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गोविंदा, किमी काटकर, दीपा साही, शिल्पा शिरोडकर, डैनी डेंजोंगपा एज वेल एज अनुपम खेर एंड कादिर खान, यानी कि फुल मसाला मस्ती मूवी थी। और आई एम श्योर आपने सोचा होगा कि हम फिल्म में तो बस एक ही गाना सुपर हिट था, विच वाज जुम्मा चुम्मा दे दे, नो डाउट, बट आई थॉट दिस लव सॉन्ग वाज प्रीटी नाइस टू। इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन, खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनात, आई विल बी विद यू टिल 6 PM। आज पेश किया जा रहा है अगले 45 मिनट्स तक आपके लिए सेगमेंट नॉनस्टॉप 90s, जिसमें आज हम फीचर कर रहे हैं 1991 में रिलीज होने वाली टॉप 10 फिल्मों के नंबर 1 हिट गाने। आई होप कि आपको हमारा ये सिलेक्शन पसंद आएगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं नंबर 3 टॉप फिल्म के गाने की तरफ।

कविता कृष्णमूर्ति और मनहर उदास की आवाज में फिल्म सौदागर का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप। ये फिल्म मनीषा कोराला और विवेक मिश्रा दोनों की ही पहली फिल्म थी, और आप ये सोचे कि पहली फिल्म में ही उन्हें इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। मेरा इशारा है दिलीप कुमार, राजकुमार, अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर जैसे नामों का, साथ में अनुपम खेर और जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म का हिस्सा थे। सो ये भी 1991 की हिट फिल्मों में से थी। इनफैक्ट ऑन द बॉक्स ऑफिस, हम ये काउंट सिर्फ बॉक्स ऑफिस और पॉपुलैरिटी के हिसाब से कर रहे हैं, तो 1991 की टॉप फिल्मों के 10 जो फिल्में थी उनके पायदान पे ये तीसरे नंबर पर आती है फिल्म एज इन सौदागर। अब चलते हैं चौथी फिल्म की तरफ, एज इन द फोर्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1991। This song specially going out to Maryam and Sohail with love.

सड़क फिल्म से लिया गया ये गाना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सुन रहे थे आप। आई एम श्योर आपको ये फिल्म याद होगी, स्टारिंग संजय दत्त एंड पूजा भाट। फिल्म लोगों ने बहुत पसंद की थी। इनफैक्ट यू नो इसका एक सीक्वल भी आया था रिसेंटली। ऑब्वियसली इट कुडंट बी एज बिग अ हिट एज द मूवी सड़क इट्सेल्फ। 1991 की हिट फिल्मों में ये चौथी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी। अब आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ। दिस वन इज टेकन फ्रॉम द फिल्म फूल और कांटे। याद है आपको, अजय देवगन और मधु थे इस फिल्म में। इट इज नाउ 3:24। अगर अभी अभी आपने ट्यून इन किया है तो कोई बात नहीं, बहुत देर नहीं हुई आप को। आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो कि आज के हमारे इस नॉन स्टॉप 90s के सेगमेंट में हम फोकस कर रहे हैं 1991 में रिलीज हुई हिट फिल्मों के गानों पर। 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज अ करंट टेम्परेचर इन द मिकिनी एरिया। आज का ज्यादा से ज्यादा तापमान था 96 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और कम से कम 79। कल की गर्मी के लिए तैयार रहिए, 98 फॉर अ हाई एंड 79 फॉर अ लो। और आइए अब चलते हैं इस सुरीले गीत की तरफ।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में सुन रहे थे आप फिल्म फूल और कांटे से लिया गया ये गाना, जो अजय देवगन और मधु पर पिक्चराइज किया गया था। यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM और पेश किया जा रहा है आपके लिए सेगमेंट नॉनस्टॉप 90s। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
7: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
8: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
8: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
10: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
5: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
11: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
5: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
12: Aaja meri gaadi mein baith ja.
13: Baith jaun? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
13: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
17: अरे वो केक आया क्या?
18: डीजे कौन हैंडल करेगा?
17: डेकोर वाले को कॉल किया।
18: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
17: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया।
18: ऑसम इवेंट्स?
17: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड अ टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
18: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
17: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
5: कॉल नाउ एट 214-725-7466। दैट्स 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
20: इंडिया में?
19: तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभालेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

दिल है कि मानता नहीं और दिमाग भी ये बात मानता नहीं कि ये गाना 35 साल पुराना है। जी हाँ, 35 years ago is when this film was released and became a blockbuster hit. Welcome back to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. Wishing you all a very good afternoon. This is Amreen Hasnat. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से, जिसमें आज आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है सेगमेंट Non-Stop 90s. और आज बात हो रही है 1991 की हिट फिल्मों की, जैसे कि दिल है कि मानता नहीं, जिसमें सभी दिलों को लूट लिया था आमिर खान और पूजा भट्ट ने अपनी अच्छी अदाकारी और अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से। ऑफ कोर्स इस फिल्म के गाने भी सुपर डुपर हिट थे, एंड आई होप कि ये टाइटल ट्रैक सुनकर आप यादों की वादियों में कहीं खो गए। 38 मिनट्स पास्ट 3, टुडे इज द 19th ऑफ जुलाई 2026, और आज के इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताबुन किया है एजी FinTechs ने। It's one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. आप भी इन पे भरोसा कर सकते हैं। कॉल कीजिए 469-942-9888 और विजिट agfintechs.com। जो गाना अभी हमने आपको सुनवाया उसमें आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। नोट किया होगा आपने कि पिछले जितने भी गाने हमने प्ले किए तकरीबन सभी में कुमार सानू की आवाज बहुत नुमाया थी, बिकॉज 90s आई कैन रियली से वाज कुमार सानूज ईयर और हिज डेकेड एक्चुअली। आइए अब चलते हैं अगली फिल्म की तरफ। नाउ दिस हैपेंस टू बी आल्सो वन ऑफ द टॉप 10 मूवीज ऑफ 1991, जिसमें हीरोइन थी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस।

देर करता नहीं देर हो जाती है। सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप अवार्ड विनिंग फिल्म हिना का ये गाना, जो कि ऋषि कपूर एज वेल एज अश्विनी भावे पर पिक्चराइज किया गया था। हिना फिल्म बहुत स्पेशल फिल्म थी 1991 की, वो इसलिए भी कि इसे बनाना शुरू किया था राज कपूर साहब ने खुद, और उन्होंने पाकिस्तान से ज़ेबा बख्तियार को अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए सेलेक्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ की वजह से वो इस फिल्म को मुकम्मल नहीं कर पाए और उसे कंप्लीट किया उनके बेटे रणधीर कपूर ने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म के तमाम डायलॉग लिखे हैं पाकिस्तान की मशहूर राइटर हसीना मोइन ने। इनफैक्ट इस फिल्म को इंडिया की तरफ से एकेडमी अवार्ड के लिए भी सबमिट किया गया था एज अ फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। Unfortunately, उन्होंने इस नॉमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। Regardless, 1991 की ये हिट फिल्मों में शुमार होती है और इस फिल्म के सभी गाने, इसकी पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत थी और जो पैगाम था वो ये कि सरहदें भी कभी मोहब्बत को होने से रोक नहीं सकती।

चूड़ी मजा ना देगी, कंगन मजा ना देगा, लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही मीठा सा गाना, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी चांदनी पर पिक्चराइज किया गया था। ये गाना फिल्म सनम बेवफा से लिया गया था, ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 10 मूवीज ऑफ 1991। इस गाने में उनके साथ थे सलमान खान। एंड इफ यू गाइज रिकॉल, ये फिल्म एक दो पठान ट्राइब्स की फैमिलीज एक्चुअली पर बेस्ड थी। इनफैक्ट एक्चुअली एक पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म थी, हक महर फिल्म का नाम था, और उसी से इंस्पायर होकर डायरेक्टर ने फिल्म सनम बेवफा बनाई थी। आइए नॉनस्टॉप 90s के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं एंड चलते हैं अगले गाने की तरफ। और हाँ, मीनवाइल मैंने सोचा रिक्वेस्ट नहीं ले रही लेकिन फीडबैक तो दे ही सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको आज का ये सेगमेंट और हमारे गानों की सिलेक्शन। 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर।

साथ ही फिल्म से लिया गया ये गाना आदित्य पंचोली, मोहसिन खान और वर्षा पर पिक्चराइज किया गया था और आवाजें थी जॉली मुखर्जी और अनुराधा पोडवाल की। और अब हमारा सेगमेंट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो जाते जाते सुनते हैं 100 डेज का ये गाना। नाउ एज फार एज आई एम कंसर्न, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक क्राइम थ्रिलर्स एंड हॉरर मूवीज, मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत बहुत बहुत अच्छी लगी थी। आप बताइए गाना कैसा है।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द 1991 हिट फिल्म 100 डेज, जिसमें रोमांस भी था और मिस्ट्री भी, हॉरर भी और थ्रिल भी, सभी कुछ था, अलोंग विद जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, मून मुनसेन और जावेद जाफरी. वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज फ्रॉम 1991 बिकॉज आई ऑलवेज लाइक समथिंग जरा हटके. ऑलराइट, अब सेगमेंट को कंक्लूड करते हैं 1991 की आखिरी सुपरहिट फिल्म के गाने के साथ. दिस वन टेकन फ्रॉम द फिल्म पत्थर के फूल, गाना सलमान खान और रवीना टंडन पर पिक्चराइज किया गया है. आई होप कि आपने सेगमेंट को एंजॉय किया. कमिंग अप नेक्स्ट इज शब्द. स्टे ट्यून्ड.

0: आपको ये गाना कैसा लगता है? आई होप यू गाइस एंजॉयड नॉनस्टॉप 90s. कमिंग अप नेक्स्ट इस शब्द जिसमें एक वर्ड लेकर हम आपको सुनवाते हैं बेशुमार गाने, नए और पुराने. आपने गेस करना है कि आज का वर्ड, आज का लफ्ज क्या है. स्टे
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, here everything is better.
9: ये तारा वो तारा हर तारा.
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
13: इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं.
15: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco, offer valid till 19 July only.
16: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problem solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
17: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus

0: health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funasia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Ducktime.
1: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman and you're listening to me on Funasia Radio.
2: खुश आमदीद कहती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं, दैट यू डूइंग ओके एंड you know, enjoying your Sunday with your friends, family or loved ones. It is 4:05 on this 19th of July, 2026. हमारे आज के सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में. क्या खास बात है इनकी? वेल, खास बात यह है कि आमतौर पे क्या होता है, आपने अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो बहुत टाइम लगता है, एज एन अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती. लेकिन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर दे मेक श्योर यू गेट दी अपॉइंटमेंट राइट अवे. एंड नॉट जस्ट दैट, जब आप वहां जाते हैं आपको वेट करना पड़ता है ना डॉक्टर का. वेल, नॉट एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, दे मेक श्योर यू डोंट हैव टू वेट. Plus, they also ensure that you get at least 30 minutes with the doctor. Because आपकी सेहत, आपकी हेल्थ और आपकी सिचुएशन को समझने के लिए कम से कम इतना टाइम तो चाहिए. पैशन हेल्थ के लिए आप सिर्फ एक पेशेंट नहीं बल्कि फैमिली हैं. सो अपनी फैमिली और अपनी हेल्थ के लिए पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जरूर लेके जाइए. बिकॉज 30 मिनट्स में यू नो दे कैन डू योर एनुअल फिजिकल. इट्स इंपॉर्टेंट. अच्छा हाँ, एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डिफिशेंसी टेस्टिंग, सभी कुछ करते हैं वो एट पैशन हेल्थ. सो गो हैड, स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट राइट अवे. डोंट टेक चांसेस विथ योर हेल्थ. वो क्या कहते हैं ना, जान है तो जहान है. कॉल कीजिए 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज देयर पैशन. ऑलराइट, अब शुरू करते हैं शब्द का सेगमेंट. हो सकता है कि आज आप ये प्रोग्राम पहली बार सुन रहे हो तो आपको ना पता हो कि शब्द का सेगमेंट क्या है. वेल, शब्द मींस वर्ड, लफ्ज. हम क्या करते हैं, कोई एक लफ्ज सेलेक्ट करते हैं और फिर जितने भी गाने अगले एक घंटे में आपको सुनवाएंगे उनमें वो वर्ड होता है. शुरुआत करते हैं हम पुराने गानों के साथ और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टार्ट विद अ 60s सॉन्ग, फिर 70s, 80s, 90s, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आप किसी गाने की रिक्वेस्ट या सजेशन देना चाहते हैं फॉर दिस सेगमेंट, क्योंकि उसमें वो वर्ड है जो हम देखना चाहते हैं सबसे पहले कि आप गेस कर पाएंगे कि नहीं. और हाँ हाँ, इनाम ज़रूर मिलेगा आपको. सही जवाब देने पर आपको इनाम मिलेगा. पहले गाना तो सुन लीजिए, तो उसके बाद अगर उस वर्ड से रिलेटेड आपको भी पता है कुछ गाने तो आप कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं. एंड इट हैज़ टू बी न्यूअर देन द सॉन्ग दैट्स बीइंग प्लेड. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं 60s का गाना आपको सुनवा रही हूँ तो आप 50s के गाने की रिक्वेस्ट या सजेशन नहीं दे सकते. इट विल हैव टू बी समथिंग न्यूअर, 70s, 80s, 90s, 2000, whatever. लेकिन नया होना चाहिए क्योंकि वी आर मूविंग क्रोनोलॉजिकली. तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं पुराने से नए गानों की तरफ. तो शुरुआत करेंगे सबसे पुराने गाने से, यानी कि 60s के गाने से. ये गाना राज कपूर साहब पर पिक्चराइज किया गया था और आवाज है मुकेश साहब की. तो आइए सुनते हैं, गौर से सुनिए गाना और गेस करने की कोशिश कीजिए कि आज का वर्ड क्या हो सकता है. और वर्ड यूजुअली गाने की पहली दो लाइनों में ही आपको मिल जाएगा.

आशिक हूँ बहारों का 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म आशिक से लिया गया ये गाना राज कपूर साहब पर पिक्चराइज किया गया था। एंड पिनाकिन साहब ना सिर्फ पहले कॉलर थे बल्कि जवाब भी बिल्कुल सही पटाक से बता दिया उन्होंने कि आज का शब्द, आज का वर्ड, आज का लफ्ज है आशिक। जी हाँ, और इसीलिए आपने जीता है सैन इडली रेस्टोरेंट से डोसा ऑफ योर चॉइस, कोई भी डोसा जो आपको पसंद है, वेज नॉन वेज व्हाटएवर, और साथ में फिल्टर कॉफी भी। सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के बारे में बताती चलूं, यहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स के साथ। साउथ इंडियन खाना, इडली, डोसा, मतलब हर तरह का मज़ेदार खाना आपको इस रेस्टोरेंट में मिलेगा और साथ में बेस्ट फिल्टर कॉफ़ी भी। तो आज ही सैन इडली वेज रेस्टोरेंट ट्राई कीजिए। दे आर लोकेटेड ऑन 121 एंड कस्टर रोड। ऑलराइट, अब शब्द सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। राज खुल चुका है, आज का वर्ड है आशिक। सो अगला गाना भी आशिक वर्ड से ही रिलेटेड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने एक डेकेड आगे का गाना अब जो सिलेक्ट किया है उसके अल्फाज यानी कि गाने के बोल इस पुराने गाने से कितने मिलते जुलते हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे।

आशिक हूँ बहारों का, किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे आप। ये गाना राजेश खन्ना और जीनत अमान पर पिक्चराइज किया गया था। यू लिसनिंग टू शब्द, जिसमें हमारा आज का वर्ड है आशिक। आइए चलते हैं 70s की ही एक और हिट फिल्म के गाने की तरफ, जिसमें आप पहचान पाएंगे, सुन पाएंगे ये वर्ड।

0: आशिक।
1: नूरी फिल्म से लिया गया ये गाना फारूक शेख और पूनम ढिल्लन पर पिक्चराइज किया गया था एज पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट शब्द। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आइए लेकर चलते हैं आपको 80s के इस गाने की तरफ।

हम आशिक हैं मिट जाएंगे, एंड ये आशिक कोई और नहीं सनी देओल थे. उनकी वन ऑफ हिज अर्लीस्ट फिल्म्स 1984 में रिलीज होने वाली फिल्म सनी से लिया गया था ये गाना. अब आइए 80s की तरफ बढ़ते हैं.

दुपट्टा तुम्हारा आशिक मिजाज 1986 में रिलीज होने वाली फिल्म करम दाता से लिया गया ये गाना मिथुन चक्रवर्ती और अमृता सिंह पर पिक्चराइज किया गया था। इफ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से, जिसमें शब्द सेगमेंट पेश किया जा रहा है। आज का वर्ड, आज का लफ्ज है आशिक।

साधना सरगम की आवाज में सुन रहे थे आप दिल का क्या कसूर फिल्म का टाइटल ट्रैक, और ये आज के सेगमेंट में इसलिए शामिल हुआ बिकॉज इट हैड द वर्ड आशिक इन इट।

0: दिल तेरा आशिक फिल्म का टाइटल ट्रैक अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में सुन रहे थे आप। ये गाना सलमान खान और माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज किया गया था। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनाथ। वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट व्हेन वी कम बैक शब्द विल कंटिन्यू।
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
1: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। सैफ अली खान और ममता पर पिक्चराइज किया गया ये गाना सुन रहे थे आप उदित नारायण की आवाज में। इट इज 36 मिनट्स पास्ट 4 एंड यू आर ट्यून्ड इन टू दिल से ऑन 104.9 FM। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय PMJ Jewels। वेल यू मस्ट बी लाइक PMJ Jewels यहाँ US में, यहाँ डैलस में, जी हाँ डैलस एज इन फ्रिस्को में। दे हैव ब्रॉट ओवर 60 years ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप टू DFW, स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शंस फॉर एवरी सेलिब्रेशन। दे आर प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा घटामनेनी। PMJ इज अ नेम ट्रस्टेड for generations. So aaj hi aap bhi check out kijiye unka naya store PMJ Jewels Frisco Main Street pe hai and I'm sure you'll find something that you are going to fall in love with. शब्द का सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है जिसमें हमारा आज का वर्ड, आज का लफ्ज है आशिक। शुरुआत की थी हमने 60s के गानों से और अब देखिए आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको 90s के इस अगले गाने की तरफ।

गुमराह फिल्म से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप, जो कि श्रीदेवी और संजय दत्त पर पिक्चराइज किया गया था। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से।

आशिक हूँ मैं, दिलदार हूँ, शाहरुख खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप, टेकन फ्रॉम द फिल्म त्रिमूत्री। शब्द सेगमेंट में हमारे आज का वर्ड है आशिक।

बादशाह फिल्म का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में. आप शाहरुख खान पर पिक्चराइज किया गया था. शब्द सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं. एज यू नोटिस, शुरुआत की थी हमने 60s के गाने के साथ और अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए कहाँ निकल आए हैं हम.

आशिक बनाया आपने हिमेश रेशमिया का सुपर हिट गाना। सुन रहे थे आप जो कि इमरान हाशमी और तनुश्री पर पिक्चराइज किया गया था। इट इज 53 मिनट्स पास्ट 4। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 एफएम फनेशा रेडियो। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात और आप सुन रहे हैं स्पेशल सेगमेंट शब्द, जिसमें आज का वर्ड, आज का लफ्ज है आशिक।

सुहेल सेन की आवाज में हैप्पी भाग जाएगी से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप। और अब कंक्लूड करते हैं आज का शब्द सेगमेंट इस आखिरी गाने के साथ।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: ब्रेकिंग न्यूज होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग नो हिडन फीस नो सरप्राइजेस और हाँ सबसे बड़ी खबर उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज हजारों फैमिलीज का भरोसा विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 4697343338 4697343338 माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इस Powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal house lender.
11: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco, offer valid till 19 July only.
12: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
13: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है एक हफ्ता 10 दिन अगले ट्यूसडे
14: तारीख पर तारीख
15: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट आज बुखार आज डॉक्टर आज इन्फेक्शन आज डॉक्टर आज एनुअल चेकअप आज डॉक्टर प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग प्लेनो फ्रिस्को मकिनी ऑब्री
13: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259
16: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
17: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली मस्ट बी 21 years or older to game.

अफसाना मेरा पहला प्यार। स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग दिस लवली संडे इवनिंग। इट्स 8 मिनट्स पास्ट 5 ऑन दिस 19th ऑफ जुलाई 2026। 94 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज अ करंट टेम्परेचर। टुडेज हाई 96, लो ऑफ 79, बट ब्रेस योरसेल्फ फॉर द हीट टुमारो। हाई ऑफ 98 एंड अ लो ऑफ 79 डिग्रीज फ़ारेनहाइट।

और अ वंडरफुल सॉन्ग राब्ता सुन रहे थे आप, ये गाना जो कि सैफ अली खान और करीना कपूर पर पिक्चराइज किया गया था फ्रॉम द फिल्म एजेंट विनोद. इससे पहले कि हम अगले गाने की तरफ बढ़े, आई वांट टू टेल यू अबाउट होको. नाउ दिस इज अ ट्रूली आइकॉनिक फूड ब्रांड. व्हेन जस्ट हियरिंग इट्स नेम ब्रिंग्स बैक अ फ्लड ऑफ मेमोरीज. वेल, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट बिकॉज आई गेस दिस इज अ नेम व्हिच इज पॉपुलर इन इंडिया. लेकिन खुशी की बात यह है दैट नाउ देयर इज अ होको राइट हियर इन नॉर्थ Texas. Now, whether you've been craving their legendary chana puri, iconic sandwiches, flavorful curries, or the famous Hoko cold cocoa that people absolutely swear by, you don't have to wait for your next trip to India anymore. I guess ab hum bhi try kar sakte hain. It's right here on Preston Road, 2693 Preston Road in Frisco. Come and experience the authentic flavors that have made it one of India's most loved food brands. And to get the full menu or aapko agar aur details chahiye, visit hoko.us. That is hoko.us. Come hungry and leave with a taste of India.

सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण पर पिक्चराइज किया गया ये गाना रेस 2 से लिया गया था। आवाजें थी आतिफ असलम और सुनीति चौहान की। इट इज 17 मिनट्स पास्ट 5, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। दिस इज अमरीन हसनात। मैंने सोचा गाने वगैरह तो होते रहेंगे, एक इंटरेस्टिंग एक सवाल आपसे पूछती हूँ। यू नो इंग्लिश के अल्फाबेट, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल अल्फाबेट्स, राइट, जैसे आई और जे, उसके ऊपर हम एक डॉट लगाते हैं। क्या आपको पता है उस डॉट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में भी ऑफकोर्स डॉट यूज़ होता है लेटर्स पर, और उर्दू की जो स्क्रिप्ट है उसमें भी डॉट यूज़ होता है, और आई बिलीव हिंदी में इसे बिंदु कहते हैं और उर्दू में इसे नुक्ता कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? आई नो यू मे थिंक इट्स डॉट, बट इट एक्चुअली हैज़ अ टर्म, एंड इफ यू नो शेयर इट विथ अस 972-235-5555। कुछ इनाम नहीं, बस नॉलेज शेयर कर रहे हैं।

और हमें भी सवाल का जवाब मिल गया. थैंक यू अंकिता, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. द टू डॉट्स, द डॉट दैट वी वर रेफरिंग टू, जो आई या जे के ऊपर होता है, उसे टिटल कहते हैं. आई नो सम पीपल कंफ्यूज्ड इट फॉर लाइक पीरियड या फुल स्टॉप, वो तो ग्रामर का एक हिस्सा है. वी वर रियली रेफरिंग के जब स्मॉल आई लिखते हैं उसके ऊपर एक नुक्ता, एक बिंदु लगाते हैं हम, राइट? तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैसे स्लैंग में उसे डॉट कहा जा सकता है, लेकिन इट्स एक्चुअली कॉल्ड अ टिटल. एंड दिस इज इंटरेस्टिंग. अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, नेक्स्ट टाइम आप किसी पार्टी में हो या फ्रेंड्स के साथ बैठे हो तो आप उनसे क्विज क्वेश्चन कर सकते हैं और थोड़ी अपनी स्मार्टनेस झाड़ सकते हैं.

taken from the film Cocktail 2. That was Mashuka, Kriti Sanon, Shahid Kapoor or Rashmika Mandanna. It is 24 minutes past 5 and you're listening to Dil Se on 104.9 FM. Interesting baat ye hai ki English mein bahut sare words hain. और ऐसा नहीं कि हिंदी और उर्दू में नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश में हैं वो उर्दू में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी सोचा है कि वो जगह, एज इन द ग्रूव दैट इज बिटवीन योर नोज एंड योर लिप्स, बिल्कुल जो लिप का आर्च होता है राइट, उसके और नाक के दरमियान एक थोड़ा सा एक डेंट है राइट, लाइक एक गढ़ा अगर हम उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपको पता है उसका एक नाम है? इज दैट इंटरेस्टिंग? नाउ आई विल टेल यू व्हाट इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश. सो इंग्लिश एक्चुअली हैज अ टर्म फॉर द वर्टिकल ग्रूव और द इंडेंटेशन दैट रन्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर नोज टू द मिडल ऑफ योर अपर लिप एंड इट्स कॉल्ड अ फिल्ट्रम. लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे जो हिंदी बोलता है तो वो कहेंगे नाक और होंठ के पीछे का गड्ढा राइट, या होंठ और नाक के दरमियान का गढ़ा, वट एवर हाउवर वे दे वांट टू से इट इन हिंदी और इन उर्दू. एज सच कोई वर्ड नहीं है. हाँ, शायरी में उर्दू में दे डू कॉल इट चाहे लब, विच इज एक्चुअली डिम्पल और वेल ऑफ द लिप. इंटरेस्टिंग है ना.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देयर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
7: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
7: कहाँ?
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
10: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
11: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
12: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
13: Mere kal wale khane mein dosa, aane wale khane mein dosa.
14: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
15: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी, फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
16: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
17: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
18: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
19: एक बार फिर वेलकम बैक टू 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, and I'll be with you till 6 p.m. That's another 30 minutes. Congratulations again to Spain for winning the FIFA World Cup. Now, I'm not much of a sports fan, but I know a lot of people was following this soccer World Cup. I hope you guys enjoyed watching it, and if you were rooting for Argentina, I'm sorry, I guess that did not happen. Anyway, today is the 19th of July 2026. It's a Sunday evening, and you are here with me on Fun Asia Radio. I'm your host, Amreen Hasnat, and yahan main शो करती हूँ एज एन एवरी सैटरडे एंड संडे आपसे मुलाकात होती है 3 से 6 के दरमियान, लेकिन इसके अलावा और भी मैं बहुत कुछ करती हूँ, जैसे कि इवेंट प्लानिंग थ्रू ऑसम इवेंट्स। नाउ आजकल हर चीज़ के लिए प्लान करना पड़ता है, खासकर इफ़ इट्स एन इवेंट, बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी पार्टी बहुत अच्छी हो। अब वो चाहे छोटी सी बर्थडे पार्टी हो या कॉन्सर्ट हो या शादी ब्याह, कोई भी रिसेप्शन हो, वट एवर इट मे बी, इवन अ कॉर्पोरेट इवेंट, यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज मैनेज प्रॉपरली एंड दैट यू गेट द बेस्ट डील्स। वेल दैट That's where an event planning company can help you, and that's what Awesome Events do. What we do is bring all the vendors together, still get you the best price, and make sure we're managing each and every vendor to make sure that your event is फ्लॉलेस, ताकि लोग याद रखें कि भाई क्या पार्टी थी। हो सकता है कि ये प्लानिंग और मैनेजमेंट आपने सब खुद ही कर लिए, नो प्रॉब्लम, आई कैन हेल्प यू ऑन द डे ऑफ द इवेंट, क्योंकि उस दिन तो आप बिजी होंगे मेहमानों के साथ, कोई तो चाहिए जो पूरे प्रोग्राम को, आइटिनरी को मैनेज करे, ऑर्गेनाइज रखे प्रोग्राम को। वेल आई कैन पर्सनली हेल्प यू विद दैट, एंड इफ नथिंग एल्स यू नीड अ प्रोफेशनल एमसी, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। और आपके इवेंट में चार नहीं तो 2-3 चांद तो मैं लगा ही दूंगी। कॉल कर सकते हैं आप मुझे डायरेक्टली टू टॉक अबाउट योर अपकमिंग इवेंट, 214-725-7466। दैट्स 214-725-7466। लिख नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, यू कैन ऑलवेज जस्ट कॉल मी हियर एट द स्टूडियो।

When it comes to dancing, everyone talks about Noura Fatehi, but there is one more name that everyone's crazy about, and that is India's Michael Jackson. Matangi Entertainment Group brings you Prabhu Deva. That is Prabhu Deva coming to DFW on Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theater in Grand Prairie. You too can be part of this. Book your tickets. Call 248-233-3828. आप फन एशिया के सोशल मीडिया पेज के थ्रू भी अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं. देयर इज अ बिग टीम दैट इज कमिंग विद प्रभु देवा. सो गेट रेडी फॉर अ मेमोरेबल इवनिंग ऑन सैटरडे ऑगस्ट 1st.

आजा नचले माधुरी दीक्षित की कमबैक फिल्म सुन रहे थे आप ये गाना उनकी फिल्म से आवाज थी सुनीति चौहान की. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो. आई होप आज आपने हमारे तमाम सेगमेंट्स और सारे गाने इंजॉय किए. इट्स 54 मिनट्स पास्ट 5. लेट्स कंटिन्यू डांसिंग.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
8: ओह हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
12: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
13: इन प्लेनो।
12: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
14: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
15: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
14: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
15: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
16: तारा वो तारा हर तारा।
17: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
18: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
19: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
2: With best music. 104.9 FM.

0: Life is a book. We all read it. Love is a blessing. We all need it. Always be happy. Always have a smile. Remember, in this world, we are just for a while. इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा। स्वागत करती हूँ इस खूबसूरत सी संडे की शाम में आप सभी का। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फॉगी, गर्मी वाली, और आज जैसे कड़ाके की गर्मी वाली कैसी भी हो, हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल। गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर। But दोस्तों, let's move on and let's talk about the world champion and wanna tell you all that Spain are world champions again. भाई, what a night, what a final match, and football has their new king and it's Spain. After long 16 long years, Spain have once again climbed to the top of the world football, defeating defending champions Argentina 1-0 after extra time in a thrilling FIFA World Cup final. So a huge, huge congratulations to the Spain team for the amazing tournament. तो चलिए स्पेन की विन सेलिब्रेट करने के लिए ये वाला गाना तो बनता है। एंजॉय दिस ट्रैक।
1: शकीरा, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

ऑसम ऑसम ऑसम दोस्तों, शकीरा और बुना बॉय की आवाज में सुन रहे आप ये गाना डाई डाई। एंड वंस अगेन ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू द स्पेन टीम फॉर विनिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2026। वेल, जिन्होंने अभी अभी चुन किया है उन सभी को बता देती हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। भाई दोस्तों, आज के हमारे शो की तो वैसे कुछ थीम नहीं है, अमेजिंग बिल्कुल हाई पीच और यू नो फास्ट ट्रैक गाने सुनेंगे। अगर ऐसे कोई गाने आपको रिक्वेस्ट करने हैं 9722355555 है स्टूडियो का नंबर।

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
2: क्या मतलब?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: जीनी हुकम मेरी अकल हम आज पार्टी के मूड में हैं एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो
6: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
6: नो प्रॉब्लम अका लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
5: और एंटरटेनमेंट
6: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है
5: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
6: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज
7: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
8: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
7: नहीं
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है
7: नहीं
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
7: वो भी नहीं
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
0: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG Fintax योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
11: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा?
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में? सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
12: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
13: जिंदगी के कई रंग, Fun Asia Radio के संग.

जिंदगी के कई रंगों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए 104.9 FM Fun Asia Radio। दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। Well, Spain is the world champion और उनको फिर से एक बार हम सब की तरफ से बहुत बहुत congratulations। What a match, 90 minutes के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम लेकर 106th मिनट पे एक्चुअली गोल हुआ, एंड दैट टू डन बाय स्पेन। बहुत ही अमेजिंग मैच था। फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ आई वाज रूटिंग फॉर स्पेन एंड रियली मेड मी हैप्पी दैट स्पेन वन दिस ईयर। चलिए हमारे शो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपके आपसे पहले ही कहा था शो के शुरुआत में कि आज की हमारे शो की कोई थीम नहीं है, बहुत ही हाई एनर्जी हाई पीच गाने सुनेंगे। अगर ऐसा कोई गाना आपका रिक्वेस्ट करने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। 1990 अबाउ गाने यहाँ पर प्ले किए जाएंगे। माही का कॉल आया था और उनको ये अंग्रेजी गाना सुनना है, तो चलिए ये वाला गाना सुनते हैं, उसके बाद हमारा हिंदी का खिटपिट चलता रहेगा।

सुनाए 104.9 FM Fun Asia Radio, ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। हाई एनर्जी गाने चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio पर। अगर आपको भी ऐसा कोई गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है, स्टूडियो का नंबर 972-235-5555 है। अगला गाना सफी की रिक्वेस्ट पर आप सबके लिए।

कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा पे पिक्चराइज बार बार देखो मूवी से सुने थे दोस्तों आप ये गाना काला चश्मा। ये शाम मस्तानी शो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर गाने चलते हैं कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के, और जब आपके पसंद के गाने यहाँ पर ज्यादा चलते हैं वो शो मैं हिट मानती हूँ। हाई एनर्जी हाई नंबर गाने यहाँ पर प्ले हो रहे हैं। अगर आपको भी आपके रिक्वेस्टेड गाने यहाँ पर प्ले होने चाहिए ऐसा आपकी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है 9723555555 है स्टूडियो का नंबर। आपके ही पसंद के गाने यहाँ पर ज्यादातर प्ले हो रहे हैं, तो अगर ऐसे गाने की कोई रिक्वेस्ट से गिव मी अ कॉल राइट अवे। विद दैट आपको लेकर चलती हूँ रायन के रिक्वेस्टेड गाने की तरफ, शेर खुल गए।

सुन रहे हैं 104.9 FM Fun Asia Radio. ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी. हाई नंबर, हाई पीच गाने और हाई एनर्जी गाने यहाँ पर चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. स्टूडियो का नंबर 9722355555. अगला गाना अनीता की रिक्वेस्ट पर.

Vicky Kaushal, oh my God, he looked amazing in this song, and the way he danced is also amazing. मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही थी भाई उनके ऊपर से. Well, करण औजला is the singer for this song, and the song is taken from the movie Bad News. दोस्तों, इतने हाई पीच हाई एनर्जी गाने अगर सुनते सुनते आपका कभी ध्यान भटक गया, एंड गॉड फॉरबिड इफ यू गेट इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लीप एंड अ फॉल इंसिडेंट, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपेंसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल एंड ऑल दोज सिचुएशंस. फॉर ऑल द सिचुएशंस यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कंपेंसेटेड. यू डोंट पे अंटिल यू विन. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन यू कैन कॉल देम. द नंबर टू कॉल इज 469-300-5046 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज attorneyomar.com.

0: बढ़ रहे दोस्तों, छोटी सी ब्रेक की तरफ कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। दिस इज योर होस्ट आरजे अपूर्वा। मैं यू गई और यू आई।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम KZMP 104.9 FM HD1 Pilot Point Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2 Sanger Texas. Powered by